दोस्तों, जिंदगी कभी भी हर दिन एक जैसी नहीं रहती। कभी धूप होती है तो कभी छांव, कभी सफलता कदम चूमती है तो कभी असफलता हमें ठोकर देकर आगे बढ़ना सिखाती है। हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है, क्योंकि हर हार अपने साथ एक सीख लेकर जाती है। जो गिरकर संभलना सीखते हैं ना, वही एक दिन ऊंचाइयों को छूते हैं।

दोस्तों, जानते हैं, किसी के आने से जिंदगी संवर सकती है, लेकिन अपने आत्मविश्वास से जिंदगी बदल भी सकती है। रिश्ते अनमोल है, मगर सबसे मजबूत रिश्ता अपने हौसलों से होता है। तो अगर आज कोई दूर है ना, तो उदास मत होइए। हो सकता है जिंदगी आपको ये सिखा रही हो कि सबसे पहले खुद का साथ निभाना सीखिए। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है ना, तब दुनिया भी उसका साथ देने लगती है।

दोस्तों, हवा की तरह बनिए जो बंद दरवाजे के सामने रुकती नहीं है बल्कि अपना नया रास्ता ढूंढ लेती है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हालात नहीं हौसलों के सहारे चलते हैं। तो जिंदगी में हमेशा हवा की तरह चलते रहिए, ताजगी बांटिए, उम्मीद जगाइए और हर नए दिन के साथ नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़िए।

0: पंकज बुध।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा

0: शिक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले दो दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at the Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector.
2: India has set a new global benchmark with this project. While countries like Germany and China usually run 2 or 3 coach hydrogen trains, India has developed a 10 coach formation. It is designed to carry nearly 2,600 passengers, which is the highest capacity among compared hydrogen trains globally. This hydrogen train is powered by a 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation. Anand Kumar, Akashwani News, Jind.
1: From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh and then visit Jalandhar in Punjab to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects. Prime Minister Modi will inaugurate 6 redeveloped Amrit railway stations in Kerala through video conferencing today, along with 75 other Amrit stations across the country. The 6 stations in Kerala are expected to significantly enhance railway infrastructure and passenger amenities across the state. Ahead of the monsoon session of Parliament beginning on 20th July, the BJP-led NDA is set to finalise its floor strategy at a meeting of senior alliance ministers chaired by Defence Minister Rajnath Singh today. The meeting is likely to focus on the NDA's legislative agenda, coordination among alliance partners and a unified strategy to counter the opposition during the session. Union Home Minister Amit Shah will be on a 3-day visit to West Bengal beginning today. Sources said that during the visit, he will participate in programs focused on border security, governance, law and order and development. Tomorrow, Mr. Shah will visit the Jumagash border outpost in Siliguri and interact with BSF personnel at the 18th Battalion border outpost. The National Testing Agency has declared results of NEET UG 2026

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक डियर लिसनर्स, इप्पुडु मी अंदरिकी ओक चिन्न चैलेंज एंटंटे, टुडेस हेल्दी मॉर्निंग क्वेश्चन। मिलेट्स नी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का ఏ ఇయర్ ప్రకటించారు? మిల్లెట్స్ని ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్గా ఏ సంవత్సరం ప్రకటించారు? నేను ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తాను, సో కొంచెం మీకు ఈజీ అవుతుంది కదా గెస్ చేయడానికి. సో ఆప్షన్ ఏ 2021, ఆప్షన్ బి 2023, ఆప్షన్ సి 2025. సో మీ ఆన్సర్ వెంటనే మా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. మా వాట్సాప్ నెంబర్ వచ్చేసి

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Welcome back, dear listeners. Meeru Vintunnaru Rainbow 101.9 FM with me, RJ Madhu. So, International Justice Day ni celebrate cheyadam venaka oka purpose undi. Adi entante victims ki manam toduga unnamani prapanchaniki cheppadam. Ekkadaina pedda anyayam jarigithe danni marchipokoddu. Nyayam kosam prayatnam aagakoddu. Ane message ni ee roju isthundi. Andike deenini awareness day ga kuda chustaru. Sir, ఫ్యాక్ట్స్ చాలా మాట్లాడుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు మ్యూజిక్ మాట్లాడే టైం వచ్చేసింది. హియర్ కమ్స్ అ సాంగ్ దాట్ విల్ మేక్ యువర్ మార్నింగ్ ఈవెన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్.

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते हेलो आदाब में। उम्मीद है कि आपका दिन जो है अच्छा जा रहा हो, क्योंकि आज जो है अर्ली मॉर्निंग से ही मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है ना। इंस्टेड ऑफ द सनराइज हिटिंग आवर फेसेस इन द मॉर्निंग, आज जो है थोड़ी ठंडी ठंडी हवा, वो कूल ब्रीज़ जो है आज हमें सुबह देखने को मिली है। तो इंस्टेड ऑफ द सन हिटिंग आवर फेसेस, वी वोक अप टू दैट प्लेजेंट मॉर्निंग एंड वो ठंडी ठंडी हवा के साथ, है ना। तो मौसम में बदलाव आया है, तो चाहे आप नो ऑफिस जा रहे हो या घर पे हो या सफ़र कर रहे हो, वेल हमें खुशी है कि आपने हमें अपना साथी बनाया है। तो मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली, और आज के इस सफ़र में साथ होंगे आपके फेवरेट गाने, दिल से जुड़ी हुई कुछ बातें और कुछ मुस्कुराने की वजह और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स। तो जो भी कर रहे हैं आप, उसके साथ म्यूज़िक का तड़का लगा लीजिए और रिलैक्स कीजिए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि आज फ्राइडे है, यानी कि वीकेंड का आगाज़ हो चुका है। और ये है आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, जहां हर सुर रंग भरता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले गाने के साथ, जो आज के इस सुबह के मौसम के साथ एकदम परफेक्ट बैठता है। बट इस गाने से पहले एक सूच,

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी

वेलकम बैक स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 10:49:27. आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन FM रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी शफली. वेल दोस्तों, सोसाइटी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो है जस्टिस. और जब बात सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हो तब जस्टिस और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. क्योंकि आज यानी 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व किया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे क्राइम कितना भी बड़ा हो, जैसे वॉर क्राइम्स, जेनोसाइड या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसाफ मिलना ज़रूरी है और ज़िम्मेदार लोगों को अकाउंटेबल भी होना चाहिए. तो इस दिन की शुरुआत हुई थी 1998 में जब रोम स्टैट्यूट को अडॉप्ट किया गया था. इस ट्रीटी के थ्रू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC इस्टेब्लिश हुआ, जिसका काम है दुनिया भर में सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए जस्टिस इंश्योर करना और विक्टिम के राइट्स को सपोर्ट करना. एक सिंपल सी बात, जस्टिस सिर्फ कानून का हिस्सा नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की भी पहचान है. और जब इंसाफ होता है तभी ट्रस्ट बनता है.

है और एक बेहतर फ्यूचर की फाउंडेशन जो है तैयार होती है। तो इसी पॉजिटिव के साथ चलते हैं हम एक और गाने की तरफ। तो सुनते रहिए FM रेनबो 101.9।

101.9. वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ द स्टोन दैट स्प्लिट्स इंडियाज रेन के बारे में, जो है पिस्सल घाट का ये अनोखा राज जो है कर्नाटका में। तो जैसे इस छोटे से अंतराल से मैंने कहा था कि जब एक ही बारिश की बूंद पच कुछ इंचेस की डिफरेंस से दो अलग अलग समुंदरों तक पहुंच सकती है, वह सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, बट ये एक फैसिनेटिंग नेचुरल वंडर है क्योंकि पिस्सल घाट का व्यू पॉइंट तो अपने ब्रेथ टेकिंग 360 डिग्री पैनोरामिक व्यूज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स के लिए काफ़ी फेमस है। लेकिन उस व्यू पॉइंट तक पहुँचने से पहले मंगन अनिहाली विलेज के जो रोड साइड पर एक छोटा सा स्टोन मार्कर मिलता है, वेल पहली नज़र में जब आप उसे देखते हैं शायद एक सिंपल सा पत्थर लग सकता है, लेकिन इसकी कहानी काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये एक विदर्ड स्टोन है जिसके दोनों साइड्स पर लिखा है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ये है पिस्सल घाट वाटर शेड स्टोन, जो इंडिया के सबसे इंटरेस्टिंग नेचुरल वाटर शेड पॉइंट्स में से एक माना जाता है। तो इस के बारे में और थोड़ी बातचीत होगी, बट आफ्टर दिस ट्रैक्स स्टे ट्यून्ड।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे इस गाने से पहले एक ऐसी स्टोन के बारे में जो है इंडिया की बारिश को स्प्लिट करता है, और कुछ ही इंचेस से ये बारिश का पानी दो अलग समुंदर तक पहुंचती है। तो जैसे मैंने कहा, ये आपको देखने को मिलता है कर्नाटका के एक गांव के रोड साइड पर, एक छोटा सा स्टोन मार्कर मिलता है जिसे शायद हम पहली नज़र में जब देखें एक नॉर्मल सा स्टोन मान के हम उसे मिस कर सकते हैं, बट लेकिन इसकी कहानी जो है काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी मानी जाती है। पिस्ली घाट वाटरशेड स्टोन जो कि है इंडिया की सबसे इंटरेस्टिंग नेचुरल वाटरशेड पॉइंट्स में से एक माना जाता है। अब वाटरशेड होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये वो नेचुरल रिच है जो डिसाइड करती है कि बारिश का पानी किस डायरेक्शन में बहेगा। अगर एक रेन ड्रॉप स्टोन के वेस्ट साइड पर गिरता है तो वो कुमारधारा और नेत्रावती रिवर्स के थ्रू ट्रैवल करते हुए अरेबियन सी तक पहुँचता है, और अगर वही ब्लड बॉन्ड बूंद जो है ईस्टर्न स्टोप पर गिर गया तो वो हिमावती और फिर कावेरी रिवर के साथ सफ़र करते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। अमेजिंग है ना, एक छोटी सी रिज और नेचर का इतना ब्रिलियंट डिसीशन। चलिए सुनते हैं एक और गाना, और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सो स्टे ट्यून टू आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9।
2: నీట్ 2026 ఫలితాలలోనూ గెలుపు శ్రీ చైతన్యదే. ఓపెన్ కేటగిరీలో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా థర్డ్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా నైన్త్ ర్యాంక్ తో పాటు ఆల్ ఇండియా ఓపెన్ కేటగిరీలో తెలుగు రాష్ట్రాలు సాధించిన టాప్ 10లో 8 ర్యాంకులు ఒక్క శ్రీ చైతన్యవే. ఎన్టీఏ వారు ప్రకటించిన ఈ ర్యాంకుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మరే ఇతర విద్యా సంస్థకు కనీసం ఒక్క ర్యాంకు కూడా లేదు. లేనే లేదు.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे इस गाने से पहले भिसले घाट के बारे में जो कर्नाटका में है, और भिसले घाट का वाटर शेड स्टोन जो है इंडिया की वन ऑफ द इंटरेस्टिंग नेचुरल वाटर शेड पॉइंट्स में से एक माना जाता है। तो एक छोटी सी रिज जो नेचर का एक ब्रिलियंट डिसीजन हमें दिखाता है कि डायरेक्शन का फ्लो कहाँ जाएगा, कैसे जाके वो दो समुंदरों तक पहुँच जाता है। भिसले घाट का सफ़र भी उतना ही खूबसूरत है। सकलेशपुर से ड्राइव शुरू होती है जहाँ दोनों तरफ लश ग्रीन कॉफ़ी प्लांटेशंस, वाइंडिंग रोड्स और मानसून के दौरान पहाड़ों को छूते हुए क्लाउड्स एक ड्रीमी एटमोसफियर क्रिएट करता है। और इसी ब्यूटीफुल जर्नी के बीच ये वाटरशेड स्टोन क्वाइटली आपका इंतज़ार करता है। ना कोई टिकट काउंटर, ना फ्लैशी साइन बोर्ड्स, बस नेचर का एक साइलेंट मास्टरपीस। इस स्टोन के बारे में माना जाता है कि इसे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंस्टॉल किया गया था, जब टोपोग्राफिक सर्वेस काफ़ी एक्टिवली किया जा रही थी। वेस्टर्न घाट्स में ऐसे रिच पॉइंट्स और भी हैं जो रिवर्स के फ्लो को ईस्ट और वेस्ट की तरफ डिवाइड करते हैं। मुदीगिरे के खालसा एरिया में भी एक ऐसा ही वाटरशेड पॉइंट देखने को हमें मिलता है ना। इंटरेस्टिंग कि कब ये इसे इंस्टॉल किया गया था और कैसे ये स्टोन जो है डायरेक्शन बदलता है। कुछ बूंद ईस्ट साइड गिरती है, कुछ बूंद वेस्ट साइड, और फिर वो कैसे जाके एक और अरेबियन समुंदर में मिलता है तो दूसरी ओर वही बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इंटरेस्टिंग है ना, नेचर हमेशा कोई ना कोई हमें सरप्राइज देता ही रहता है। एंड कहते हैं ना, नेचर इज़ अबाउट एवरीथिंग, सो या दैट्स व्हाट इट इज़। यू आर लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM Rainbow 101.9 पर. मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज फिसले घाट के बारे में, जो कि एक वाटरशेड स्टोन है, एक विदर्ड स्टोन, जो दोनों साइड्स पर, जहाँ पे लिखा हुआ है एक तरफ अरेबियन सी और दूसरी तरफ लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल. और ये जो है, ये वाटरशेड इंडिया का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग नेचुरल वाटरशेड पॉइंट्स में से एक माना जाता है. तो इस स्टोन के बारे में, जैसे हमने जाना कि इसे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान इंस्टॉल किया गया था जब टोपोग्राफिक सर्विस काफ़ी एक्टिवली किया जा रहा था. और अब जब आप इस यूनिक मार्कर को एक्सप्लोर करते हैं, तो जर्नी कंटिन्यू होती है भिसले व्यू पॉइंट की तरफ. यहाँ से पुष्पगिरी, कुमार पर्वत और दूधाबेट्टा माउंटेन रेंजर्स एक के बाद एक स्पेक्टैक्युलर व्यू जो है क्रिएट करती है. और साथ ही सराउंडिंग्स में भिसले रिजर्व फॉरेस्ट दुनिया का रिकॉग्नाइज्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है, जहां वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए भी काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. तो अगर आप नेचर, रोड ट्रिप्स या हिडन वंडर्स के फ़ैन हैं, तो भिसले घाट सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जहां माउंटेन्स सिर्फ सीनरी नहीं बनाते, बल्कि ये भी डिसाइड करते हैं कि बारिश की हर बूंद अपना सफ़र किस समुंदर की तरफ शुरू करेगी. तो एक छोटा सा रिज और एक रेन ड्रॉप गिरता है स्टोन के वेस्ट साइड और दूसरा गिरता है राइट ईस्ट साइड पे, जहाँ से डिसाइड होती है उसकी जर्नी कि वो अरेबियन सी तक पहुँचता है, तो दूसरी ओर जो है वो जाके मिलता है बे ऑफ बंगाल में. कितनी इंटरेस्टिंग है ना, और नेचर का ये ब्रिलियंट डिसीजन. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM Rainbow 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजे रवली.

0: के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
1: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ दो या तीन डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने भारत की पहली

हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: FM Rainbow 101.9.
1: బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ డిగ్రీ పీజీ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్లు జరుగుతున్నాయి. చివరి తేదీ ఆగస్టు 7. వివరాలను సమీపంలోని స్టడీ సెంటర్లో లేదా హెల్ప్ డెస్క్ 04023680333 లేదా 2360555 లో లేదా www.braou.ac.in లో పొందవచ్చు.
2: Welcome back. आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस लैंग्वेज को हम हर रोज बात करते हैं बिना कोई मतलब सोच भी नहीं सकते ना कि अगर लैंग्वेजेस नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं होते तो हम डे टू डे कॉन्वर्जेशंस कैसे करते, घर पे कैसे बात होती, टीचर्स स्कूल में कैसे पढ़ाते. और अब अगर हम ऑफिस का सीन इमेजिन करते हैं, बॉस आपको देखते हैं, आप बॉस को देखेंगे, मीटिंग चल रही है, प्रेजेंटेशंस के बदले सब लोग सिर्फ चार्ट से देख रहे हैं और इनमें सब क्लैप कर देते हैं. क्यों? किसी को समझ नहीं आया.

लेकिन एक मिनट, क्या कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से ही होता है? एक्चुअली नहीं। कभी नोटिस किया है, जब आपका बेस्ट फ्रेंड थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, वो कुछ बोलते भी नहीं, फिर भी आपको पता चल जाता है ना कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है भाई, है ना? या फिर मम्मी दूर से ही एक लुक देती है और बिना एक वर्ड बोले ही समझ आ जाता है कि शायद आज हमने कुछ गलती की है, तो आज तो डांट पड़ने ही वाली है। या कभी कभार हमारा चेहरा देखकर ही माँ समझ जाती है कि शायद कुछ गड़बड़ है, या हम उदास है, कुछ तो परेशानी है ना? सी, दैट्स इज बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ऑलरेडी वर्क्स। और साइंटिस्ट कहते हैं कि कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट नॉन वर्बल होता है, मतलब स्माइल हो गया, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, ये सब अपनी एक लैंग्वेज है अपने आप में। कभी कभी एक स्माइल 1,000 वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होती है, और एक हग, उसमें टेक केयर, आई एम विद यू एंड एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ कह जाता है विदाउट सेइंग एनीथिंग। सो बिना लफ्ज़ों के भी शायद हमारा बॉडी रिएक्ट करने लगता है।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब ऑन आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। मैं हूँ आपके साथ रवली। वेल, हम बात कर रहे हैं अगर लैंग्वेजेस नहीं होती, राइट? जैसे हमने बात की कैसे हम घर पे कम्युनिकेट करते हैं या कैसे स्कूल में शायद इशारों से या ड्राइंग से बात करने पड़े, या कैसे ऑफिस में भी बिना बोले सिर्फ प्रेजेंटेशंस को हम प्रोजेक्शंस में देख के सिर्फ सब हाँ में हाँ मिला देते, राइट? बट कि जैसे मैंने कहा कि कभी कहीं ना कहीं जब हमारे फ्रेंड्स उदास होते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस या उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ हमें पता चल जाता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद देम। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है ये अपने आप में एक लैंग्वेज मानी जाती है, और हमारे स्माइल हो, आई कॉन्टैक्ट हो, फेशियल एक्सप्रेशंस या पोस्चर हो, ये सब कुछ बिना वर्ड्स के एक्सप्रेस कर ही देती हैं। और फिर आता है म्यूज़िक। मतलब अपने फेवरेट गाने के बारे में सोचिए, हो सकता है उसकी लैंग्वेज शायद आपको समझ ना आती हो, लेकिन इमोशंस बिल्कुल समझ आती है ना? इसीलिए हम कहते हैं कि म्यूज़िक यूनिवर्सल है। भले ही भाषा हमें समझ ना आए, इमोशन से हम कनेक्ट करते हैं, है ना? कभी हमने कोरियन गाना सुन के फील आया हो, या स्पैनिश म्यूज़िक पे हमने डांस किया हो, या तेलुगु गाने की कोई मेलोडी सुनकर हमने रिलैक्स फील किया हो, है ना? शायद अगर स्पोकन लैंग्वेजेस नहीं होती तो दुनिया गाकर शायद बात करती, मॉर्निंग ग्रीटिंग भी एक ट्यून होती, प्रपोजल भी शायद एक मेलोडी हो सकती थी, राइट? और आज के इस ज़माने में इमोजीज वैसे भी बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ द कन्वर्सेशंस इमोजीज से ही होती हैं आजकल, राइट? बस सर इमोजी भेज दो और सामने वाला पूरी स्टोरी समझ आ जाता है। मतलब अगर सामने वाले को उन इमोजीज को डिकोड करना आता हो तो बिना लिखे ही थ्रू दैट इमोजीज वो सामने वाला इंसान जो है स्टोरी को समझ सकता है, राइट? कभी किसी फ्रेंड ने सिर्फ थम्स अप रिप्लाई किया हो और उस इमोजी के कितने मीनिंग्स हो सकते हैं, शायद दैट कैन बी इट्स ऑल राइट, या मैं बिजी हूँ, देखता हूँ, ज़्यादा मत बोलो, अमेजिंग। एक इमोजी डिफरेंट इमोशंस, राइट? अगला गाना सुनिए फ्रॉम द मूवी ABCD से बेजुबान।
1: నీట్ 2026 ఫలితాలలోను గెలుపు శ్రీ చైతన్యదే. ఓపెన్ కేటగిరీలో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా థర్డ్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా నైన్త్ ర్యాంక్ తో పాటు ఆల్ ఇండియా ఓపెన్ కేటగిరీలో తెలుగు రాష్ట్రాలు సాధించిన టాప్ 10లో 8 ర్యాంకులు ఒక్క శ్రీ చైతన్యవే. ఎన్టీఏ వారు ప్రకటించిన ఈ ర్యాంకుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మరే ఇతర విద్యా సంస్థకు కనీసం ఒక్క ర్యాంకు కూడా లేదు, లేదు, లేనే లేదు.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: FM Rainbow 101.9।
1: Well, बात हो रही है कि अगर लैंग्वेजेस नहीं होती कि कैसे हम कम्युनिकेट करते, पर हमने जाना कि बॉडी लैंग्वेज भी, मतलब बॉडी के ज़रिए, आँखों के ज़रिए, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस हो या हमारा पोस्चर हो, उससे भी कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। और आज के ज़माने में इमोजी से एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसके एक इमोजी के अनेकों आंसर्स या मतलब हम ले सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी होती, वर्ड्स ना होने का मतलब फीलिंग एक्सप्लेन करना मुश्किल। कैसे बोलते, मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू, आई फॉरगिव यू या आई एम सॉरी, ये चार वर्ड्स कितने मतलब रिलेशनशिप्स को बचा देते हैं। और कभी कभी एक सिंपल सॉरी ईगो से बड़ा होता है और एक थैंक यू किसी को पूरा दिन बेहतर बना देता है। और सोचिए, अगर स्टोरीज ही नहीं होती, ना किताबें होती, ना नॉवेल्स होती, ना पोएट्री, ना सॉन्ग विद लिरिक्स, नो रेडियो, बिकॉज रेडियो भी तो वर्ड्स का मैजिक भी है ना।

0: FM Rainbow 101.9.
1: आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, और हम बात कर रहे हैं आज कि इमेजिन करने के लिए कि अगर लैंग्वेजेस नहीं होते तो कैसे होता। तो जैसे हमने कहा कि हर लैंग्वेज की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपना एक मैजिक उसके साथ आता है। और लैंग्वेज जो है सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती है ना, ये जनरेशंस को कनेक्ट करती है। ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरीज, पेरेंट्स की एडवाइस।

वो कनेक्ट करती है. यू नो, ग्रैंड पेरेंट्स की स्टोरीज, पेरेंट्स की एडवाइस, टीचर्स की लेसन्स, फ्रेंडशिप की गॉसिप, है ना, सब लैंग्वेज की वजह से ही पॉसिबल होता है. इमेजिन इफ शेक्सपियर कुडंट राइट, कबीर कुडंट राइट दोहास, और शायद गुलजार साहब के लिरिक्स ना होते, कितना कुछ शायद मिस कर देते हम. तो अगर लैंग्वेजेस नहीं होती, हाँ हम कम्युनिकेट तो कर लेते एक्सप्रेशन से, म्यूजिक से, आर्ट से, डांस से, नेचर से, लेकिन जो डेप्थ वर्थ देती हैं वो शायद किसी और चीज़ में नहीं मिलती. एक सेंटेंस किसी की लाइफ बदल सकता है, एक स्पीच हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है, और एक कॉन्वर्सेशन लाइफ टाइम फ्रेंडशिप बना सकती है. सो टुडे मे बी लेट्स अप्रिशिएट समथिंग वी यूज़ एवरी सिंगल सेकेंड, विच इज़ द लैंग्वेज. आज किसी अपने को कॉल कीजिए, थैंक यू बोलिए, या मिस यू बोलिए, या सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि कैसे हो, बिकॉज वर्ड्स आर फ्री बट देयर वैल्यू इज़ प्राइसलेस. और इसी ब्यूटिफुल थाट के साथ चलिए एक और गाना हम सुनते हैं. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, जहां हर कन्वर्सेशन दिल से होती है और हर गाना एक नई कहानी कहती है. सो स्टे ट्यून्ड.

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: Welcome back. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 101.9 और अब वक्त हो गया है हमारे फोन इन सेगमेंट का. तो आज का टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? हम सब अपनी मदर टंग के साथ बड़े होते हैं, राइट? स्कूल में हम अलग अलग भाषाएं सीखते हैं, राइट? स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं या दोस्तों के साथ हिंदी या रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं. और आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से दुनिया भर की लैंग्वेजेस सुनने को मिल जाती है. कभी किसी कोरियन ड्रामा को देखकर लगा हो शायद, यार कोरियन समझ आ जाती तो कितना मज़ा आता. या फिर किसी स्पैनिश सॉन्ग को सुन के सोचा हो, काश लिरिक्स भी समझ आते. और जब कभी ट्रैवल वीडियोस देखते हैं तो लगता है शायद एक नई लैंग्वेज आती तो लोगों से कनेक्ट करना कितना ईजी हो जाता. तो इसी बात पर आज का हमारा सवाल है कि अगर आपको एक नई लैंग्वेज सीखने का मौका मिला तो आप कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहेंगे और क्यों? क्या वो स्पैनिश हो सकती है बिकॉज यू लव ट्रैवलिंग, और फ्रेंच बिकॉज इट साउंड सो एलिगेंट, और मे बी कोरियन बिकॉज ऑफ के पॉप एंड के ड्रामास, और इट कुड बी एनी इंडियन लैंग्वेजेस यू ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न. तो चॉइस कोई भी हो हम आपसे सुनना चाहेंगे. आप हमें कॉल कर सकते हो 0402323 0030 पर या 0402323 4821 और 0402970 4715 पर.

0: इंग्लिश हिंदी संस्कृत भी पढ़ाई की है मैडम ने।
1: जी
0: अभी पढ़ाई करने को मेरे कहते भगवान चांस नहीं दिया मैडम, मैं अंधे आदमी आंख गया मैडम। अभी लिखना बोले तो लिखता हूँ, इधर मैं सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करता हूँ, कुछ कुरियर आई तो साइन करता हूँ, इंग्लिश में साइन करता हूँ मैडम,
1: जी सर।
0: हिंदी भी आता मैडम। अभी इधर हैदराबाद आने के बाद हिंदी बात करने को आया मैडम मेरे को,
1: अच्छा अच्छा
0: नया ये
1: जी
0: नया भाषा हो गई है ना मैडम,
1: हाँ बिल्कुल,
0: हिंदी
1: तो
0: हिंदी
1: आपने
0: आई तो
1: हिंदी
0: थोड़ा
1: सीखा
0: थोड़ा
1: आपने,
0: फोरा फोरन ही आई तो भी अच्छे
1: राइट
0: से बात करने को आता मैडम।
1: जी
0: आज
1: सर,
0: सुबह नरसिंहा रेड्डी जी रावणय्या जी मुँह से थोड़ा सुन लिया मैडम, इंटिंटी रामायण रावणय्या गारु राहरी राहरी अभी सुनते रहता मैडम, वारे थैंक्स चुप्तना मैडम।
1: ओके
0: हिंदी आई तो हैदराबाद आने के बाद बात करने को आया
1: आपने
0: आता
1: सीखा
0: मैडम मेरे
1: जी,
0: को।
1: राइट राइट, ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। तो वेल दोस्तों, हमने पढ़ाई करते वक्त या कॉलेज में अपनी इंटरेस्ट की लैंग्वेज अगर ऑप्शन हमें मिलता तो शायद हमने चूज़ किया हो टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। अगर अभी भी विद आफ्टर योर एजुकेशन हो गया हो फिर भी आप कोई नई भाषा सीखना चाहोगे तो वो कौन सी भाषा होगी? हेलो
0: हेलो, वेरी
1: हेलो,
0: वेरी गुड आफ्टरनून मैडम जी, श्रीनिवास
1: गुड आफ्टरनून सर।
0: राम मलकपेट माँ। तो
1: जी सर बोलिए।
0: मुझे पहले तो तेलुगु हिंदी इंग्लिश तो लोकल लैंग्वेज जैसे कैसा भी,
1: जी
0: उसके सिवा मराठी कन्नड़ा तमिल लंबाड़ी ये लैंग्वेजेस भी आते हैं मैडम मेरे मुझे। हाँ
1: आते हैं, तो और कोई लैंग्वेज है जो आप सीखना चाहोगे स्पेशली?
0: तो क्योंकि जैसा जैसा लोग मिलते रहते हैं वैसा वैसा मैं उन दोनों से दोस्ती बढ़ा के वो लैंग्वेज सीख लेता हूँ। तो
1: अच्छा
0: एक्चुअली क्या है मेरे को केरला लैंग्वेज सीखने का बहुत ही इंटरेस्ट था। हाँ
1: अच्छा मलयाली आपको सीखना चाहेंगे, राइट राइट।
0: मलयाली मलयाली सीखने का था, वो मेरा यशस्वी बूथ चल रहा था तो सामने ही वो लोग रहते थे, यशोदा में काम करते थे, तो
1: राइट
0: सीखेंगे बोले तो वो लगा 2 महीने 3 महीने रह के चले जा रहे थे, उसके सिवा बहुत ही नहीं सीख सका। तो मेरे को केरला लैंग्वेज सीखना था, मलयाली सीखने का बहुत ही
1: इंटरेस्ट
0: आइडिया है,
1: है
0: तो
1: जी,
0: अगर कोई मिले तो कंपलसरी मैं सीख लेता हूँ मैडम। थैंक
1: राइट राइट, थैंक यू। तो आप
0: यू।
1: कोशिश जारी रखिए मलयालम सीखने की। थैंक यू फॉर कॉलिंग।
2: నీట్ 2026 ఫలితాలలోనూ గెలుపు శ్రీ చైతన్యదే. ఓపెన్ కేటగిరీలో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా థర్డ్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా నైన్త్ ర్యాంక్ తో పాటు ఆల్ ఇండియా ఓపెన్ కేటగిరీలో తెలుగు రాష్ట్రాలు సాధించిన టాప్ 10లో 8 ర్యాంకులు ఒక్క శ్రీ చైతన్యవే. ఎన్టీఏ వారు ప్రకటించిన ఈ ర్యాంకుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మరే ఇతర విద్యా సంస్థకు కనీసం ఒక్క ర్యాంకు కూడా లేదు, లేదు, లేనే లేదు.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, तो हेलो रेनबो में आपका एक बार फिर से स्वागत है. और आज का सवाल हमने आपसे पूछा है कि अगर आपको चांस मिलता है एक नई भाषा सीखने की, तो वो कौन सी लैंग्वेज आप सीखना चाहोगे और क्यों? तो बात करते हैं हमारे अगले कॉलर से. हेलो. हेलो
2: मैडम.
1: जी सर, गुड आफ्टरनून. जी अजहर जी, तो बताइए आप कौन सी भाषा सीखना चाहेंगे अगर आपको मौका मिला तो?
2: जी देखिए, उर्दू लैंग्वेज की शुरुआत यहाँ हैदराबाद से हुई है. अब हम हैदराबाद में रहते पर उर्दू लैंग्वेज कहीं से मेरे को आती नहीं. हालांकि स्कूल में जब मैं था तो उर्दू लैंग्वेज पढ़ा था. उर्दू, हिंदी, तेलुगु, ये तीनों लैंग्वेजेस में उतनी ग्रिप नहीं है जितनी रहना चाहिए. जस्ट खाली ऐसी बेसिक थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट पढ़ने आता है, क्योंकि मेरे अपने माइंड में नहीं वो सेट हो पा रही है
1: जी.
2: मेरे को बहुत मुश्किल हो रही है, तो मैं वो लैंग्वेज छोड़ के इंग्लिश में फोकस करा, तो इंग्लिश में अच्छा है. अगर फिर से एक बार अच्छी तरीके से सीखना है तो उर्दू लैंग्वेज सीखना पसंद करेंगे मैडम.
1: ओके ओके, राइट.
2: उर्दू लैंग्वेज में जो शेर व शायरी होते हैं, नज़्म होते हैं, गज़ल होते हैं, पोएट्री होते हैं, स्टोरी होते हैं
1: जी.
2: वो उर्दू और उर्दू लैंग्वेज में हिंदी में मिक्स हो गई. तो समझ नहीं आता कि हिंदी और उर्दू में कौन सा वर्ड है. इसी तरीके से एक बार जावेद अख्तर साहब का इंटरव्यू हुआ था मैडम. जावेद अख्तर साहब का इंटरव्यू हुआ था, तो वो आधा घंटा एक घंटा कुछ इंटरव्यू चला, तो उसमें से ऑडियंस में से एक पर्सन बोले कि सर आप उर्दू में बात करिए, उर्दू इंटरव्यू दियो. तो जावेद साहब बोल रहे थे स्टार्टिंग से लेके अब तक मैं पूरा उर्दू में ही बोल रहा हूँ.
1: अच्छा, तो आप
2: वो ऐसा लग रहा था उनके वर्ड सुन के हिंदी में वो बात कर रहे हैं, जबकि वो उर्दू है
1: जी.
2: तो मैं उर्दू

0: आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: गुड आफ्टरनून मैडम,
0: गुड आफ्टरनून सर।
1: सिमारेडी मैडम, प्रेमावती पेट से। तो
0: जी सर, तो
1: मेरे
0: बताइए।
1: को मैडम ये ओरिया सीखने का शौक है मैडम,
0: उड़िया सीखना चाहते हो आप?
1: ओरिया,
0: इंटरेस्टिंग।
1: क्योंकि मैं मंथली जो है ना, मैं ही जो किताबें पढ़ती हूँ उसमें से और लैंग्वेज में से अपने तेलुगु में ट्रांसलेशन होता हूँ बुक्स, वो
0: ओके ओके।
1: जिसमें प्रिंट होता, वो अच्छे अच्छे कहानियां रहती वो वहाँ लोकल के। अगर
0: अच्छा, तो
1: समझो मेरे को अगर लैंग्वेज वो आ गया तो डायरेक्ट मैं वही किताबा पढ़ सकती हूँ बोल के मेरे को बहुत इच्छा है मैडम।
0: राइट राइट, तो आप वो सीखना चाहेंगे। राइट
1: जी
0: सर,
1: मैडम, जी,
0: थैंक यू सर, थैंक यू फॉर
1: थैंक यू
0: कॉलिंग।
1: मैडम।
0: वो कितनी इंटरेस्टिंग है ना कि हमारे ही देश में बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जो हम सीखने की कोशिश करते हैं, फॉर वॉट एवर रीज़न इट माइट बी, राइट? कईयों के लिए लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, या ट्रैवलिंग के लिए हो गया हो, या करियर के लिए है, या कुछ लोग मूवीज़ या म्यूज़िक या सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए भी जो है कुछ नई लैंग्वेज सीखना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसा नया लैंग्वेज आप सीखना चाहोगे तो वो कौन सी होगी और क्यों, आप हमारे साथ बात करके कॉल करके बात करिएगा ऑन नंबर 0402323 0030 0402323 4821 पर। मैं हूँ आपके साथ आरजे रवली ऑन एफएम रेनबो 101.9।
2: నీట్ 2026 ఫలితాలలోనూ గెలుపు శ్రీ చైతన్యదే. ఓపెన్ కేటగిరీలో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా థర్డ్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా నైన్త్ ర్యాంక్ తో పాటు ఆల్ ఇండియా ఓపెన్ కేటగిరీలో తెలుగు రాష్ట్రాలు సాధించిన టాప్ 10లో 8 ర్యాంకులు ఒక్క శ్రీ చైతన్యవే. ఎన్టీఏ వారు ప్రకటించిన ఈ ర్యాంకుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మరే ఇతర విద్యా సంస్థకు కనీసం ఒక్క ర్యాంకు కూడా లేదు, లేదు, లేనే లేదు.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back. You're listening to FM Rainbow 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजी रवली एंड हम बात कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है कि अगर मौका मिलता है तो आप कौन सी भाषा सीखना चाहोगे और क्यों. तो इसी विषय पे हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं. हेलो,
2: हरिओम.
1: नमस्कार सर.
2: नमस्कार जी.
1: जी सर, तो बताइए सर, आप कौन सी भाषा सीखना चाहोगे और क्यों.
2: मैं संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहता हूँ. अभी आज के दिन मेरी परिस्थिति यह है कि मैं संस्कृत पढ़ तो सकता हूँ लेकिन संस्कृत में वार्तालाप नहीं कर सकता.
1: ओके.
2: तो मुझे संस्कृत में वार्तालाप करने की बहुत इच्छा है. मैं, मेरे एक मित्र हैं, वे केवल संस्कृत ही बोलते हैं. कहीं भी जाएंगे तो केवल संस्कृत में ही वो वार्तालाप करते हैं. मुझे भी संस्कृत में वार्तालाप करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसका अध्ययन करके सीखना चाहता हूँ. दूसरी बात है कि संस्कृत आज मैं पढ़ तो सकता हूँ लेकिन अभी मुझे उसका गहराई से अध्ययन करना है ताकि मैं हमारे जो वेद हैं,
1: जी
2: आप सुन रहे हैं मुझे,
1: बिल्कुल,
2: हमारे जो वेद है वो संस्कृत में है, तो संस्कृत भाषा निपुणता से मैं अगर सीख जाऊं तो हमारे वेदों का भी अध्ययन मुझे करना है. हमारे वेदों में इतना साहित्य है, इतनी जानकारी है, यानी हमारे वेदों में सारा विज्ञान भरा पड़ा हुआ है. उसमें आयुर्वेद भी है, उसमें ये विमान बनाने की विधि भी दी हुई है, सारा शास्त्र हमारे वेदों में है. तो इसीलिए संस्कृत भाषा अच्छे ढंग से सीख करके मैं वेदों का अध्ययन करना चाहता हूँ.
1: राइट सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग.
2: आभारी हूँ आपने मुझे समय दिया.
1: राइट. तो भाषा यानी कि लैंग्वेज भी काफी इंटरेस्टिंग होती है ना, क्योंकि स्पेशली अगर हमारे देश में हम देखा जाए तो हर एक स्टेट की अपनी भाषा है और यू नो हम दो तीन लैंग्वेजेस तो बचपन में ही सीखते हैं, है ना. मदर टंग हम घर में सीखते हैं, यू नो, या अगर स्कूल में चले गए तो इंग्लिश या हिंदी भी हम सीख लेते हैं, या आजकल बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस भी आई हैं दैट यू नो हम इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी सीखने को आज मौका मिल रहा है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जब लैंग्वेजेस जो है और अलग अलग लैंग्वेजेस जब हमें नहीं सिखाते थे, बट ऑनलाइन भी कुछ आजकल कोर्सेस आ गए जहाँ पे आपकी अगर इच्छा हो तो, अगर आपकी इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर इनरोल करके उस लैंग्वेज को सीख सकते हो, ताकि आप जिस चीज़ के लिए सीखना चाह रहे हो उसमें आप नो अच्छा फील कर सके, या आप किसी पर्पस के लिए भी हो, इधर फॉर ट्रैवलिंग और यू आर गोइंग टू लिव देयर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको कन्वर्स करने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और इजी से आपको रहने के लिए भी काफ़ी मददगार रहेगा. और वही कुछ लोग हैं जो अपनी फेवरेट यू नो किताब पढ़ने के लिए हो या कोई मूवी या ड्रामास देखने के लिए, जो नेटिविटी या ओरिजिनलिटी उस भाषा में होती है उसे समझने के लिए वो लैंग्वेज सीखना हो. सो इट्स डिपेंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कि वो किस रीज़न के लिए एक नई भाषा सीखना चाहेंगे. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9.
3: నీట్ 2026 ఫలితాలలోనూ గెలుపు శ్రీ చైతన్యదే. ఓపెన్ కేటగిరీలో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా థర్డ్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా నైన్త్ ర్యాంక్ తో పాటు ఆల్ ఇండియా ఓపెన్ కేటగిరీలో తెలుగు రాష్ట్రాలు సాధించిన టాప్ 10లో 8 ర్యాంకులు ఒక్క శ్రీ చైతన్యవే. ఎన్టీఏ వారు ప్రకటించిన ఈ ర్యాంకుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మరే ఇతర విద్యా సంస్థకు కనీసం ఒక్క ర్యాంకు కూడా లేదు, లేదు, లేనే లేదు.

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरची रफली। और हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको चांस मिलता है या मौका मिला एक नया लैंग्वेज सीखने के लिए तो वो कौन सी हो सकती है। सो वी हैव अ कॉलर राइट नाउ विद अस, तो उनसे जानते हैं। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो मैडम।
0: हेलो सर।
1: हाँ मैडम, आई नो ऑलरेडी ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस, बट स्टिल आई एम लैगिंग इन बंगाली एंड संस्कृत।
0: ओके
1: आई वांट टू लर्न फ्रेंच इंटरनेशनली,
0: ओके
1: दैट इज व्हाट माय इंटरेस्ट मैडम।
0: ओके सो योर इंटरेस्ट लाइज इन लर्निंग फ्रेंच नाउ, इफ दैट यू
1: ओके
0: हैव
1: मैडम।
0: लर्न बंगाली एंड अदर लैंग्वेजेस इन इंडिया। राइट,
1: हाँ
0: थैंक यू
1: मैडम, हाँ
0: सर,
1: मैडम,
0: थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: ओके मैडम।
0: राइट, तो भाषाएं बहुत हैं और सबके इंटरेस्ट भी डिफर करते हैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड द रीज़न माइट बी वेरी इंटरेस्टिंग इज़ वेल। राइट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनली अपने करियर के लिए एक भाषा सीखते हैं, दैट इज़ लाइक उनके लिए वो मैंडेटरी हो जाता है। राइट, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो बस बिकॉज ऑफ द श्योर इंटरेस्ट इन दैट लैंग्वेज वो नई भाषा सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। एंड मे बी इट गिव्स अ जॉय टू पीपल इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस और यू नो समथिंग एक्साइटिंग देन द नॉर्मल डे अहेड।
2: నీట్ 2026 ఫలితాలలోనూ గెలుపు శ్రీ చైతన్యదే. ఓపెన్ కేటగిరీలో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా థర్డ్ ర్యాంక్, ఆల్ ఇండియా నైన్త్ ర్యాంక్ తో పాటు ఆల్ ఇండియా ఓపెన్ కేటగిరీలో తెలుగు రాష్ట్రాలు సాధించిన టాప్ 10లో 8 ర్యాంకులు ఒక్క శ్రీ చైతన్యవే. ఎన్టీఏ వారు ప్రకటించిన ఈ ర్యాంకుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి మరే ఇతర విద్యా సంస్థకు కనీసం ఒక్క ర్యాంకు కూడా లేదు, లేదు, లేనే లేదు.

0: 101.9.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9 और मैं हूँ आपके साथ आरजे रफली। फिलहाल अगला गाना सुनते हैं फ्रॉम द मूवी प्रोफेसर, सो एंजॉय दिस ट्रैक।

0: 101.9.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. वेल स्टूडियो क्लॉक में वक्त हुआ है 1:56, यानी कि वक्त का इशारा ने मुझे कर दिया है कि आज का मेरा आपके साथ यहाँ वक्त खत्म होता है. तो आपके साथ मुलाकात होगी फिर से अगले शो में. तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम रेनबो 101.9, और आपका साथ देने के लिए 2 बजे से बिल्कुल तैयार है आरजे विंकी विद न्यू स्टोरीज एंड मच मोर कॉन्वर्सेशंस अहेड. तो सुनते रहिए और बने रहिए एफएम रेनबो 101.9 के साथ.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: Rainbow 101.9.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

101.9 MHz पर ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 और 12 सेकेंड्स हो रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: है। तो क्या होता है कि ये डायबिटीज जिसकी वजह से नसा में डैमेज आता है, ये कितने समय से डायबिटीज है, उसका कंट्रोल कैसा है, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसी है, किडनी वगैरह इफेक्ट हुए कि नहीं, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में कैसी है, ये सारी चीजें इस डैमेज को कंट्रोल करने में
1: आती
0: मददगार
1: हैं
0: होती हैं।
1: जी। जहां तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान का ताल्लुक है,
0: जी,
1: इसमें ज्यादातर जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग होते हैं, ज्यादातर आँख की देखभाल पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं,
0: बिल्कुल।
1: वो फोकस नहीं करते हैं आई केयर पर। तो इस ताल्लुक से आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं गवर्नमेंट जो स्कीमात लाती है आँख के देखभाल के लिए, तो वो रियल बेनिफिशियरी तक पहुँच पाते हैं?
0: नहीं, आजकल तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ बिल्कुल पहुँच रहे हैं,
1: जी
0: क्योंकि जैसे चेकअप होता है, स्क्रीनिंग होता है, कि वो टायर सिस्टम होता है कि हाँ पहले तो प्राइमरी स्क्रीनिंग एक जगह करते हैं, जैसे गांव वगैरह में स्क्रीनिंग करते,
1: जी
0: प्रॉब्लम है उसको हायर सेंटर भेज देते हैं ताकि उनका उचित इलाज हो सके वहाँ पर।
1: जी
0: अभी तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इन चीज़ों में, काफ़ी अच्छा
1: बदलाव आया।
0: बदलाव आ रहा है अब तो।
1: जी जी
0: नहीं तो बहुत बार ये होता था कि जब हम लोग और कुछ कर नहीं सकते उस स्टेज में आते थे, तो हम लोग को बोलना पड़ता था अब आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पर्दा बहुत खराब हो चुका है।
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: अभी थोड़े पहले स्टेज में आते हैं तो लेजर या इंजेक्शन या ऑपरेशन, इनके जरिए रोशनी काफी हद तक बचाई जा सकती है केसेस में।
1: काफ़ी इनकरेजिंग आपने बात कही कि मुतमईन लग रहे हैं आप गवर्नमेंट के इन स्कीमात की वजह से, तो आम आदमी इससे ज़रूर फ़ायदा उठा रहा है।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, अब एक आम आदमी को क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं कि वो रेटिना के ख़राब होने के सिम्टम्स क्या उसको महसूस करने चाहिए?
0: रेटिना के जो सिम्टम्स होते हैं, तो वैसे तो रेटिना में यदि कोई भी खामी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, उसमें काफ़ी बार उसमें ना तो दर्द होता है ना और कुछ प्रॉब्लम होता है, बस रोशनी धीरे धीरे कम होती है। और काफ़ी बार लोगों को ये समझते हैं कि शायद मोतिया बढ़ रहा है,
1: अच्छा
0: लेकिन कुछ और चीज़ें भी है, जैसे कभी कभी पर्दे वगैरह में रेटिना में सुराख बन जाते हैं जिससे कि पर्दा अपनी जगह से सरक जाता है, इसको रेटिनल डिटैचमेंट बोला जाता है।
1: जी
0: इस टाइप के कंडीशन में काफ़ी बार लोगों को ये दिखता है कि आंखों के सामने बिजली चमक रही है, लाइट आ रही है, अचानक से इस टाइप की सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, या तो फिर अचानक से काले काले धब्बे जैसे पॉट जैसे आंख के सामने आने लग
1: अच्छा
0: जाते हैं, या कोई काली सी परछाई या शेडो जैसी चीज़ साइड से दिखने लगती है। यदि इस टाइप की चीज़ें लगे तो डेफिनेटली वो रेटिना का ही प्रॉब्लम है।
1: जी
0: और खासकर जिनका पावर ज़्यादा होता है, जिन बच्चों का पावर ज़्यादा होता है माइनस में, मोटे चश्मे होते हैं, उनको इस टाइप के प्रॉब्लम आने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो जैसे ही पहली बारी जाँच करें, उस समय से ही उनका एक बार सालाना रेटिना चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्दे में समय के साथ धीरे धीरे कमजोर हिस्से बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं। क्योंकि यदि अपन को ये प्रॉब्लम जल्दी पता चल जाता है तो उसको लेजर के जरिए अपन उन सुराख को सील कर सकते हैं,
1: अच्छा
0: लेकिन यदि पर्दा सरक जाता है तो फिर वो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, उतने ऑपरेशन के बावजूद भी रिकवरी शायद पूरी ना हो,
1: जी
0: हर केस में पूरा रिकवर नहीं हो पाता है उसमें।
1: तक की गुफ्तगू में आपने डायबिटीज के जरिए होने वाले रेटिना के प्रॉब्लम्स पे और कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात बताई। क्या आप समझते हैं कि मौजूदा जो इंसानी लाइफस्टाइल है, चूंकि इंसान काफी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के तरफ उसका रुझान बढ़ता जा रहा है, एक मानों में वो इन अशिया का गुलाम हो चुका है,
0: बिल्कुल।
1: तो क्या आप समझते हैं कि ये मौजूदा लाइफस्टाइल भी रेटिना के खराब होने में कुछ अपना रोल अदा कर रही है?
0: नहीं, इसमें रेटिना से ज़्यादा जो है आँख की नज़र, आई साइट, इनके डेवलपमेंट में, इनके जो डैमेज होने में ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
1: जी
0: खासकर बच्चे जो फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको काफ़ी चांसेस होते हैं कि चश्मे का पावर जल्दी आ जाता है, और
1: अच्छा
0: वो बहुत जल्दी चश्मे का पावर बढ़ता है। जब ये पावर बढ़ता है तो पीछे पर्दा जो है रेटिना धीरे धीरे कमज़ोर भी होता है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर वगैरह पर ज़्यादा काम करते हैं तो उनको भी धीरे धीरे आंखों में थकावट आने लगती है, आंखों में स्ट्रेन आ जाता है, और कभी कभी लगता है कि थकावट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, अनकंफर्टेबल से रहते हैं। ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोला जाता है
1: अच्छा
0: इसको। लेकिन एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, सेलफोन वगैरह बच्चों के लिए नहीं है।
1: जी, खास तौर
0: बिल्कुल
1: पे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं
0: बिल्कुल।
1: वो, और लेकिन देखा ये जाता है कि अक्सर वही एडिक्ट हो चुके हैं
0: हाँ
1: मोबाइल फोन्स पर, ज़्यादा औकात वही इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आंखों की बीमारियों में इजाफा होता जा रहा है।
0: सिर्फ ये सेलफोन से आँखों का ही नहीं, उनका सोशल डेवलपमेंट भी कमज़ोर पड़ जाता है।
1: जी, पर्सनालिटी
0: हम
1: डेवलपमेंट भी कम हो रही है।
0: बिल्कुल, एक दूसरे से तालमेल रखना, एक दूसरे से बात करना, दोस्तों से मिलना, ये
1: जी
0: सारी
1: जी जी
0: चीज़ें,
1: जी
0: सोशल इंटरेक्शन जो है बहुत कमज़ोर पड़
1: रीडिंग
0: जा रही
1: हैबिट्स
0: है,
1: भी कम होते
0: कम
1: हैं।
0: हो जा रही हैं।
1: जी
0: तो इसलिए फ़ोन सिर्फ एक दूसरे से बात करने के अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं है, खासकर बच्चों के लिए। तो
1: जी, जब कोई रेटिना में फॉल्ट नज़र आता है आपको या कोई डिफेक्ट नज़र आता है, तो आप कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि ये आगे चलकर

0: इस प्रॉब्लम की जो ग्रेविटी है वो बढ़ेगी और इसको सर्जरी करना पड़ेगा, ये आप कब डिसाइड कर पाते हैं कि ये सर्जरी इसका बेहतरीन इलाज होगा?
1: नहीं, जैसे देखिए आपके सामने जब कोई भी बंदा आता है तो वो हमेशा नज़र कम हुआ है करके आता है, तो अपन को पहला चीज़ ये देखना है नज़र कम क्यों हुआ है,
0: जी
1: कोई चश्मे का पावर है हाँ या नहीं, नहीं तो मोतिया तो नहीं बन गया है, या आँख के अंदर पीछे रेटिना में कोई खामी तो नहीं है, या नसा में दिमाग से जाने वाली नसों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जब अपन जांच करते हैं एग्जामिनेशन में, उसमें पता चलता है कि हाँ मोतिया है या रेटिना में प्रॉब्लम है। तो जैसे रेटिना में प्रॉब्लम भी रहा, मान लो डायबिटीज की वजह से रहा, तो डायबिटीज की वजह से कुछ स्टेजेस में तो अपन लेजर ट्रीटमेंट से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए अपन को कभी कभी कुछ टेस्टों की जरूरत पड़ती है, जैसे ओसीटी बोला जाता है जो कि स्कैनिंग होता है, या ओसीटी एनजीओ होता है जिसमें कि खून की सप्लाई भी अपन स्टडी करते हैं।
0: जी
1: इससे अपन को पता चलता है कि

0: होता है जिसमें कि खून की सप्लाई भी अपन स्टडी करते हैं।
1: जी
0: इससे अपन को पता चलता है कि हाँ इसको इलाज करने की जरूरत है या इसको लेजर करने की जरूरत है और इसका रिकवरी कितना हो सकता है। और इसके अलावा यदि जांच करने में यदि अपन को दिखता है कि पर्दा सरक गया है, जैसे कोई भी मैकेनिकल चीज हो गई, तो मैकेनिकल चीज को अपन को ऑपरेशन के जरिए ही सेट करना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: लेकिन जैसे सूजन वगैरह ये अपन दवाइयों से कम कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई मैकेनिकल डिफॉर्मिटी है तो उसको अपन को ऑपरेशन करके उसको फिर से, जैसे मान लो हड्डी टूट गई, हड्डी तो जोड़नी ही पड़ेगी, उसमें दवाइयां अपन नहीं दे सकते।
1: बेशक
0: तो जैसे ही पर्दा सरक गया तो वो ऑपरेशन वाला केस हो जाता है फिर।
1: जी, कुछ रेमेडीज मैं समझता हूं कि मेडिकेशन वगैरह से भी हो सकती है। तो उमूमन देखा जाता है कि कोई कार्डियक प्रॉब्लम्स में एक्सरसाइज एडवाइज करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, तो ऐसा कोई आँख के बेहतरी के लिए, आईसाइट की बेहतरी के लिए या रेटिना की हेल्थ की बेहतरी के लिए कोई आप सजेस्ट करते हैं एक्सरसाइजेस वगैरह?
0: ऐसा कोई एक्सरसाइजेस प्रूवन तो नहीं है,
1: जी
0: जैसे योगा वगैरह में बोलते हैं कि आंखों के मूवमेंट के एक्सरसाइज बोलते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई बढ़ती है, उससे अच्छा
1: जी
0: रहता है।
1: क्योंकि
0: लेकिन
1: इब्तदा में आपने कहा था कि नसों से जो ब्लड सप्लाई की
0: जी,
1: कमी होती है वो एक मेजर फैक्टर है।
0: क्योंकि लेकिन जैसे डायबिटीज में नसा के खून की सप्लाई की कमी, खून की छोटी छोटी नलियां होती है जो
1: जी
0: अंदर खून पहुंचाती है, वो बंद हो जाती हैं, या शुगर से ज़्यादा होने की वजह से, और जो सेल जो कि उन खून की नलियों को बनाते हैं वो सेल्स की डैमेज से होता है,
1: जी
0: और इसकी वजह ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होना और ज़्यादा समय तक ग्लूकोज का लेवल बड़ा होना है। तो इसमें ऐसा एक्सरसाइजेस का तो ऐसा प्रूवन कुछ ये नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज हाँ शरीर को जिस वजह से हो रहा है उस वजह को ठीक रखें तो अपन को प्रॉब्लम नहीं आएंगे।
1: जी
0: क्योंकि अपन एक एक प्रॉब्लम सिर्फ बुखार आया करके क्रोसिन लेने से नहीं, वो बुखार क्यों आया है वो देख के उस वजह को ठीक करेंगे तो बुखार तो अपने आप कम हो जाएगा।
1: जी
0: तो उस तरीके से वजह को हमेशा ठीक करना रहता है अपन को।
1: हमारे मुल्क के तनाजुर में जब हम बात करते हैं तो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, क्या रेशियो होता है इनका, ये जो रेटिना खराब होने की जो रेट होता है?
0: नहीं, यदि डायबिटीज नेग्लेक्टेड है तो वो 100% धीरे धीरे खराब ही करेगा वो।
1: अच्छा,
0: लेकिन जैसे यदि आम अपन 100 लोगों को
1: सो आप
0: देखें,
1: डायरेक्टली इसको रिलेट कर रहे हैं डायबिटीज? जी
0: एग्जाम्पल दे
1: जी
0: रहा हूँ मैं बस।
1: जी
0: हाँ लेकिन खैर, जैसे अपन 100 लोगों को देखते हैं तो 100 में 40 कम से कम जो रेटिना के प्रॉब्लम वाले होते हैं वो डायबिटीज़ वाले ही होते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ है तो
1: रेटिना
0: आँख
1: खराब
0: ख़राब
1: हो।
0: हो जाएगा,
1: जी
0: क्योंकि 40 साल से डायबिटीज़ है फिर भी बिल्कुल हेल्दी है, शुगर का कोई असर नहीं है आँखों में, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं।
1: अच्छा
0: और ऐसे भी लोग हैं जिनका शुगर अच्छा नहीं था, उनको हमने बोला कि पहले आप सेहत अच्छी बना के आइए, फिर देखते हैं अपन आगे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, कुछ ट्रीटमेंट
1: जी
0: की
1: जी
0: ज़रूरत पड़े। और 2-3 महीने बाद जब देखते हैं तो उनका कंडीशन इतना अच्छा हो गया कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है बोल के भेजा हम लोग ने, बस अब आप सेहत का भरपूर ख्याल रखिए, सब अच्छा रहेगा।
1: जी ये आंखों की एक जनरल जो केयर होती है उस बारे में सामईन को थोड़ा बताइए कि ओवरऑल जो केयर होना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली अबाउट रेटिना और कैटरैक्ट, एक ओवरऑल हेल्थ, जैसे कि इंसान को सुबह उठते ही साफ सफाई का लिहाज रखना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: तो आंख की देखभाल किस तरह करनी चाहिए?
0: आंखों की देखभाल के लिए जस्ट आंखों को जब सवेरे उठते तो जैसे अपन नहाते हैं उस समय आंखों को जस्ट जनरल क्लीन कर लेना काफ़ी रहता है,
1: जी
0: क्योंकि आंख की जो कुदरती जो नेचुरल क्लीन
1: कवरिंग्स वगैरह
0: क्लीनिंग
1: है,
0: क्लीनिंग है
1: जी
0: वो खुद की अच्छी
1: ल्यूब्रिकेंट्स
0: है।
1: ऑटोमेटिक सीक्रेट होते
0: हाँ
1: हैं
0: बिल्कुल,
1: उसके।
0: क्योंकि जैसे मान लो एक आंख में कचरा भी गिर जाता तो पहले आंसू बढ़ जाते,
1: जी
0: और यदि अपन आंख को मलेंगे नहीं तो जो कचरा गिरता है वो धुल के बाहर आ ही जाता है, तो अपना शरीर खुद ही अपने आप को ठीक करता रहता है।
1: जी
0: तो जब तक ज़रूरत नहीं है ऐसे कोई खास आँख के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं
1: जी
0: है।
1: एक्स्ट्रा केयर करने की
0: नहीं,
1: आप उसको आवश्यकता नहीं समझते?
0: एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि हाँ खाने में फल और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा लें,
1: जी
0: क्योंकि इनमें ना कुदरती एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो उम्र की वजह से या डायबिटीज़ या किसी की वजह से भी जो डैमेज होते हैं उनको अपने आप ठीक करते हैं। तो अच्छी मात्रा में फल और सब्जियाँ खाना बहुत अच्छा रहता है।
1: बीनाई का राज ताल्लुक विटामिन ए से भी कहा जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि डाइट में विटामिन ए को शामिल करने से आंखों की कुछ बीमारियों को किसी हद तक कम किया जा सकता है?
0: नहीं, जैसे विटामिन ए जो है आजकल काफ़ी बार जो अपन खाना बनाते हैं उसी तेल में विटामिन ए भी डाला हुआ रहता है, फोर्टिफाइड
1: अच्छा
0: विटामिन ए होता है,
1: जी
0: तो विटामिन ए की कमी के केसेस हमने बहुत ही कम देखे हैं। अब तो आज से करीब 15-20 साल पहले हम लोग देखते थे कि हाँ विटामिन ए के केसेस काफ़ी देखते थे, लेकिन
1: जी
0: आजकल बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि
1: अच्छा
0: नेचुरल कुकिंग ऑयल में ही वो फोर्टिफिकेशन है इसीलिए वो।
1: ये जो नॉर्मल तरीक़े इलाज होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर आई हॉस्पिटल्स में, इसमें सप्लीमेंट्स की तरफ भी अहमियत दी जाती है कुछ विटामिन्स की या फिर
0: नहीं, खासकर
1: न्यूट्रिशनल?
0: बच्चों में विटामिन ए 25,000 यूनिट्स वगैरह तो देते हैं, जब
1: जी
0: जब वो
1: जी
0: चेकअप करते हैं तो उस समय दिया जाता है। काफ़ी बार बच्चों के डॉक्टर ही देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसलिए अक्सर बच्चों में तो कमी नहीं देखे, और प्रेगनेंसी में भी अभी प्रीनेटल चेकअप्स

0: होते हैं कि
1: जी
0: जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो रजिस्टर करती हैं, तो उनको ऑलरेडी वो असेस किए पूरे लेवल्स, विटामिन, ये सब असेसमेंट किया जाता है। तो आजकल तो बहुत ही कम हो गए हैं इस टाइप।
1: जहाँ तक बड़ों का ताल्लुक है या फिर टीनेजर्स का ताल्लुक है, ये तो अपनी शिकायत कर सकते हैं आँखों की बीमारी या तकलीफ के बारे में, लेकिन नौमौलूद या इन्फेंट्स को आप कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ, ये जो नौमौलूद बच्चा है, जो जस्ट बॉर्न बेबी है, ये इसकी आई में डिफेक्ट है?
0: जैसे बहुत बार जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, जो समय के पहले पैदा होते हैं,
1: जी
0: 7वें महीने में, 8वें महीने में, ऐसे उनमें भी काफ़ी बार रेटिना के प्रॉब्लम आते हैं। और क्या होता है कि जैसे जो आँख में खून की नलियों का डेवलपमेंट होता है,
1: जी
0: जो कि आइडियली माँ के शरीर के अंदर होता है, लेकिन बच्चे जब प्री मैच्योर होते हैं तो आँखों में, रेटिना में खून की सप्लाई की डेवलपमेंट पूरी नहीं होती। और बाहर का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, इतने छोटे बच्चों के लिए उतना सेफ नहीं रहता है।
1: जी
0: तो कभी कभार क्या होता है कि ये जो खून की नलियाँ, इसका डेवलपमेंट नॉर्मल ना हो के अबनॉर्मल हो जाती हैं। ये खून की नलियाँ आँख के बीच में आना शुरू हो जाती हैं और बाद में पर्दे में खिंचाव पैदा करके पर्दे को डैमेज कर देती हैं और रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हफ्तों का प्रॉब्लम है,
1: जी
0: क्योंकि इसको अपन का ट्रीटमेंट भी जो करना है ये हफ्तों में ही करना होता है। तो काफ़ी बार जैसे जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, तो इनको बहुत बार नर्सरी में जाके हम लोग देखते हैं बच्चों को कि इनका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आँखों में नसों का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, कितना हुआ है। और यदि प्रॉब्लम हो भी रहा है तो इनको शुरुआती स्टेज में अपन लेज़र से रोशनी बचाई जा सकती है बच्चों की। और इसके अलावा बहुत बार जो बच्चों के डॉक्टर भी हैं, वो भी छोटे बच्चों को भेजते हैं, जो इन्फेंट्स को भेजते हैं, कि इनका चेकअप करके देखिए इनका कैसा डेवलपमेंट है। आइडियली इनको शुरू के 3 हफ्ते में ही चेकअप करते हैं, फर्स्ट चेकअप 3रे हफ्ते तक कर देते हैं।
1: जी
0: और लेकिन एट लास्ट 1 महीने के अंदर तो 100% चेकअप होना ही है,
1: अच्छा
0: क्योंकि ये शुरुआती दौरे में पता चलता तो इसका इलाज है। क्योंकि लेकिन एक बार पर्दा सरक गया, सिकुड़ गया, तो उसके बाद उसका सक्सेस रेट भी बहुत कम हो जाता है, और ऑपरेशन वगैरह करने के बावजूद भी रोशनी नहीं आ पाती है। तो
1: जी
0: ये अच्छी बात है, आजकल बच्चों के डॉक्टरों में भी अवेयरनेस है, तो इसलिए वो बच्चों को हमेशा चेकअप कराने के लिए भेजते हैं।
1: एक जो ट्रेंड चल पड़ा है आई केयर के फील्ड में, वो है लेज़र ट्रीटमेंट।
0: जी,
1: तो क्या आप समझते हैं कि ये एक वाकई एक अल्टरनेट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है या फिर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है?
0: नहीं, जैसे देखिए लेज़र जो कॉमनली अपन समझते हैं वो चश्मा हटाने वाला लेज़र है, जैसे कि लेज़र करके चश्मा, जैसे आप चश्मे का पावर कम हो जाता है। ये एक तरफ से कॉस्मेटिक बोल सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि ये ऑपरेशन जो है ये कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, जिनको चश्मा नहीं पहनना चाहते उनका एक अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी हद तक सेफ भी है ये प्रोसीजर।
1: जी
0: लेकिन जैसे बोले, जो कुदरती है वो बेस्ट है बोलूँगा मैं तो,
1: सही,
0: क्योंकि जो चीज़ अच्छी है उसको मत छेड़ो बोलूँगा मैं,
1: बेशक।
0: क्योंकि कितना भी बोलो हर चीज़ एक ऑपरेशन ही होता है, और कोई भी ऑपरेशन 100 में 100 नहीं होता। वो 1 लाख में 1 जन को दिक्कत होती होगी, लेकिन वो एक बंदा आप नहीं होना चाहोगे।
1: बेशक।
0: तो यदि आपको दिक्कत है तो काफ़ी सेफ प्रोसीजर करवा सकते हैं, उसके एडवांसेस भी बहुत आ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा जो लेज़र होता है, रेटिना में भी लेज़र अलग होते हैं, और आंखों की काफ़ी चीज़ें जो इलाजें होती है वो सब लेज़र से होते हैं, सब अलग अलग टाइप के लेज़र से होते हैं।
1: जी तो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है मेडिकल फील्ड में, इस आई केयर का जहाँ तक ताल्लुक है, इससे पूरी तरह फ़ायदा उठाना चाहिए, ये मैं समझता हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो ये अल्टीमेट जो ब्लाइंडनेस होता है
0: जी
1: डॉक्टर
0: सर,
1: ए श्रीनिवास,
0: जी जी
1: दैट इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ प्रिलिमिनरी डिफेक्ट इन द रेटिना और इग्नोरिंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द आईज?
0: नो, इट्स इट मे बी ड्यू टू ऑप्टिक नर्व। जो ऑप्टिक
1: हाँ
0: नर्व होता है, जो नस आँख से दिमाग में जाती है, उसका डैमेज हो सकता है। प्रॉब्लम दिमाग में ही हो सकता है, कि मान लो कोई पैरालिसिस जैसा एक हिस्सा डैमेज हो गया दिमाग का, जहाँ से जो आँखों की नसें जा रही हैं, तो उसका उस वजह से भी हो सकता है। रेटिना में भी डैमेज है, उससे भी हो सकता है।
1: अच्छा
0: और बाकी जैसे और है, जैसे मोतिया या काली पुतली, इनकी चीज़ों से भी हो सकता है। लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि जैसे मोतिया ठीक किया जा सकता
1: जी
0: है,
1: जी
0: लेंस बैठा देते हैं, ठीक हो जाता है। काली पुतली भी डैमेज हो गई तो उसमें नई पुतली ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। तो कुछ चीज़ें तो करेक्ट कर सकते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन कुछ चीज़ें ठीक नहीं कर सकते, खासकर जो नस जो आँख से दिमाग में जाता है, ऑप्टिक नर्व जिसको
1: जी जी
0: बोलते हैं,
1: जी
0: उसके प्रॉब्लम्स एक बार यदि वो सूख गए तो उसका कोई खास इलाज नहीं है अभी तक।
1: तो ये किस स्टेज पे आप डिटेक्ट कर पाते हैं कि ऑप्टिक नर्व में कुछ फॉल्ट हुआ है? ये इट इज़ आफ्टर यू नोटिस डिफेक्ट इन द रेटिना और इट कैन बी डन बिफोर रेटिना ऑल्सो?
0: नो, जब आप रेटिना एग्जामिन कर रहे हैं तो आप
1: जी
0: ऑप्टिक नर्व बिल्कुल देखते हैं
1: हाँ
0: हमेशा,
1: हाँ
0: और शरीर में सिर्फ आँख ही एक ऐसा हिस्सा है जहाँ खून की नलियाँ और

0: नसों को डायरेक्टली आंखों तले देख सकते हैं डायरेक्टली।
1: जी जी जी
0: तो यदि नस में, ऑप्टिक नस में सूजन हो सकता है, सूजन वगैरह, तो सूजन क्यों है, क्योंकि यदि सूजन वगैरह के कुछ चीज़ों के इलाज भी हैं, इलाज करते तो रोशनी वापस आ जाती है उनमें,
1: जी
0: पर लेकिन जो बिल्कुल सूख चुके हैं उनमें चांसेस बहुत कम रहते हैं, तो वो जांच पे पता चल जाता है। और कुछ टेस्टर भी होते हैं जिनमें कि आंखों में सिग्नल देते हैं और वो दिमाग तक कितना पहुंच रहे हैं वो टेस्ट की जाती हैं, तो
1: जी
0: उनसे भी थोड़ा अंदाजा आता है कि कुछ चांस है कि नहीं है।
1: अब हम अपनी गुफ्तगू को इख्तितामी मराहिल पर लाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे इलाज के ताल्लुक से कि आमतौर पर देखा जाता है कि ये जो आम आदमी जो है ये कॉस्टली सर्जरीज अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उमूमन ये क्या रेंज के ट्रीटमेंट होते हैं ये रेटिना के और इसकी?
0: नहीं, रेटिना भी जैसे काफ़ी जगह आरोग्यश्री में है या
1: जी
0: कुछ हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट भी होता है,
1: जी
0: ऐसा नहीं कि हर जगह एक्सपेंसिव है। रेटिना के कुछ इलाज एक्सपेंसिव ज़रूर हैं, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं अफोर्डेबल रेंज में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ जगह बिल्कुल जैसे सर्विस प्रोवाइड होता है, ट्रस्ट हॉस्पिटल हो गए, इन सब में काफ़ी जगह फ्री ट्रीटमेंट हो जाता है।
1: जी आप सामीन को क्या मशवरा देंगे? आजकल बहुत कमर्शलाइजेशन है, यानी ऑप्टोमेट्रिक सेंटर्स भी हमें देखने में आते हैं जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स नहीं होते हैं लेकिन ये कमर्शियल बेसिस पे चलते हैं, तो क्या इनके पास रुजू होना चाहिए या फिर इनसे बचना चाहिए?
0: नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपन एक बेसिक चेकअप ज़रूर करा सकते हैं, क्योंकि सबसे जल्द पहले नज़दीक वही मिलते हैं अपन को।
1: जी
0: काफ़ी बार मेन हॉस्पिटल जाने में या बड़े हॉस्पिटल जाने में झिझक भी होती है, खर्चा भी एक दिमाग में होता है, तो एक बार बेसिक चेकअप तो वहाँ करा ही सकते हैं। लेकिन यदि सेटिस्फाइड नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम लगता है, तो एक बार पूरा चेकअप कराने के लिए किसी बड़े हॉस्पिटल में आ जाना अच्छा रहता है।
1: जी और उमूमन ये देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं सारी मशीनरीज मौजूद होती हैं, तो क्या अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी गवर्नमेंट की तरह इक्विपमेंट सारा मौजूद होता है आई ट्रीटमेंट के लिए?
0: नहीं, प्राइवेट में पूरे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, सब अवेलेबल होते हैं प्राइवेट
1: जी
0: में। और प्राइवेट में क्योंकि ना ये है कि ज़्यादा नए मशीन्स भी बहुत हैं
1: अच्छा
0: जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत बार बेसिक मशीन्स होते हैं जितने अपन को इलाज के लिए ज़रूरत रहते हैं,
1: जी जी
0: लेकिन एडवांस बहुत बार प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: गवर्नमेंट में भी आते हैं जैसे बड़े सेंटर्स में आते हैं बिल्कुल।
1: तो कुछ रेयर केसेस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से केसेस रेफर भी होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में?
0: कुछ स्पेशल टेस्टिंग की ज़रूरत है तो रिफ़र होते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर ए श्रीनिवास, आपकी मालूमाती बातें सामाइन को बताई अमराज चश्म के ताल्लुक से, ख़ास तौर पर पर्दे के ताल्लुक से और आँखों की उमूमन सेहत के ताल्लुक से, और सबसे अहम बात आपने ये बताई कि रेटिना और कैटरैक्ट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इससे बहुत आगे चलकर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मालूमात से सामईन मुस्तफीद होंगे और ज़रूर आपके बताए हुए मुफीद मशवरों पर अमल करेंगे। आपका बेहद शुक्रिया।
0: शुक्रिया, थैंक यू।
2: समय डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत डॉक्टर ए श्रीनिवासा को आप सुन रहे थे। उन्होंने आंखों की सेहत, आंखों की बीमारियों, रेटिना के इलाज और एहतियाती तदाबीर के हवाले से इंतहाई अहम बातें बताई हैं, कुछ मशवरे भी दिए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये हमारे सामईन के लिए फ़ायदा मंद साबित होंगी। आप इससे ज़रूर इस्तफ़ादा हासिल करेंगे। साथ साथ डॉक्टर ए श्रीनिवासा ने जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने को कहा है वो भी आप इख्तियार करेंगे और दूसरों को भी इससे आगाह करेंगे। ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 MHz पर, और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुल अफशा के संग।

समय स्टूडियो सी घड़ी में 10:07 और 20 सेकंड्स हो रहे हैं। अब वक्त हो चला है खूबसूरत पुराने फिल्मी नगमों से सजे प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जाका। समय कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कानों के रास्ते सीधे दिल में उतरती हैं और फिर हमेशा के लिए वहीं बसेरा करती हैं। वक्त का पहिया चाहे कितनी ही तेज़ी से क्यों ना घूमे, उन आवाज़ों की ताजगी हमेशा बरकरार रहती है उनमें।

कोई कमी नहीं आती। आज गीत सुरीले गाते जा सिलसिले के तहत हम जिस फनकार की बात करेंगे, उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द था, एक ऐसी मिठास थी जो सुनने वालों को अपनी तरफ खींच लेती। उनका गायकी का अंदाज सादा था लेकिन पुरअसर भी था। उन्होंने अपनी आवाज से राज कपूर जैसे अजीम अदाकार के जज्बात को अमर किया। आप जान ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। वो एक ऐसे ग्लोकार थे जिनके नगमों ने उदास दिलों को सहारा दिया, खुशियों में एक अलग सा रंग भरने का काम किया। आइए गीत सुरीले गाते जा में उसी फनकार को याद करते हैं। यादें ही वो कीमती असासा होती हैं जो वक्त की गर्द में भी अपनी चमक नहीं खोती। जिस फनकार की हम बात कर रहे हैं उनके बारे में आपसे और भी बातें होंगी, लेकिन आइए सुनते हैं एक ये प्यारा सा गीत। इस गीत के हवाले से भी कुछ यादें हैं, हम वो भी आपको बताएंगे, और हमें यकीन है कि जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो सुनकर आप जान जाएंगे कि आज गीत सुरीले गाते जा में हम किसकी बात करने जा रहे हैं। लीजिए सुनिएगा।

मारूफ फिल्मसाज राज कपूर की सन 1951 में रिलीज़ होने वाली फिल्म आवारा का ये गीत था जिसके बोल थे आवारा हूँ। इस गीत को आवाज़ दी थी ग्लूकार मुकेश ने। सामिन, ग्लूकार मुकेश 22 जुलाई सन 1923 को

दिल्ली में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी मीठी और मुनफरिद आवाज़ से मौसीकी को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया। आपको ये भी बता दें कि जो गीत अभी आपने सुना, जिसके बोल थे आवारा हूँ, वो हिंदुस्तान का पहला ऐसा गीत था जिसने जोग्राफियाई सरहदों को उबूर किया। और इस गीत ने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक में धूम मचा दी थी। कहा जाता है कि दुनिया के मकबूल तरीन गानों में से एक गाना आवारा हूँ है। रूस, चीन, तुर्की, उज्बेकिस्तान और यूनान समेत 15 ममालिक ऐसे हैं जहाँ इस गीत का अपनी अपनी जबान में तर्जुमा किया गया था। और आज भी इन मुल्कों में ये गीत बहुत ही शौक से सुना जाता है। तो सामईन, अब आप जान ही गए होंगे कि हम आज ग्लूकार मुकेश जी की बात करेंगे। इस बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन साथ साथ उनके गाए हुए गीत भी सुनेंगे। लीजिए सुनिएगा अगला गीत।

101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुल अफशा के संग। सामईन गीत सुरीले गाते जा में आज हम बात कर रहे हैं ग्लोकार मुकेश जी की। मुकेश के वालिद का नाम जोरावर चंद माथुर और वालदा का नाम चांदरानी था। उनके वालदैन हरियाणा के हिसार से नकल मकानी कर दिल्ली आ गए थे। जब उनकी पैदाइश हुई थी तो कौन जानता था कि खानदान के 10 बच्चों में मुकेश पूरे खानदान का नाम इस तरह रोशन करेंगे कि उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमेशा याद रखा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि हुकूमत हिंद के पब्लिकेशन डिवीजन ने मुकेश पर एक किताब भी शाये की है जिसका नाम इंडिया के पहले आलमी ग्लोकार मुकेश हैं। किताब के मुसन्निफ राजीव श्रीवास्तव हैं जो फिल्मी मौसीकी के माहिर कहलाते हैं। राजीव श्रीवास्तव पहले भी मुकेश पर एक किताब लिख चुके हैं। उनके गीत हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। आइए सुनते हैं एक और नगमा जो कि लिया गया है फिल्म संगम से।

समीन, मुकेश ने अपने 35 साल करियर में फिल्मों के लिए तकरीबन 900 गाने गाए, लेकिन उनके मकबूल गानों की तादाद 900 होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो हजारों गाने गा चुके हैं। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के गानों की तादाद उनसे कहीं ज़्यादा रही, लेकिन मुकेश मकबूलियत में किसी से कम नहीं है। मेरा जूता है जापानी, सब कुछ सीखा हमने, बोल राधा बोल और कई ऐसे गीत हैं जिन्हें मुकेश ने अपनी आवाज़ दी, अपनी आवाज़ का जादू जगाया और ये गीत उनकी मुनफरिद पहचान बन गए।

समीन गीत सुरीले गाते जा आप सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ग्लोकार मुकेश जी की। मौसीकार खयाम और ग्लोकार मुकेश की गहरी दोस्ती थी और खयाम ने पहली मर्तबा मुकेश के साथ सन 1958 में फिल्म फिर सुबह होगी के लिए काम किया और उनसे 2 सिंगल्स और 3 डुएट गवाए। इतना ही नहीं, मुकेश पर शाये होने वाली किताब का पेश लफ्ज भी मारूफ मौसीकार खयाम ने ही लिखा है। सन 1976 की फिल्म कभी कभी में खयाम की मौसीकी में मुकेश के गाए हुए गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है और मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये 2 गाने बेहद मकबूल हुए। जब ये गाने रिलीज हुए तो लोगों को बेहद पसंद आए और ये मौसीकी के सुनहरी सफ़ात पर दर्ज हो गए। मौसीकार खयाम ने लिखा कि कभी कभी मेरे दिल में जो गीत है वो सदी के बेहतरीन गीतों में से एक है और मुकेश जी ने उस गीत को बहुत ही अच्छे अंदाज में गाया था। आइए सुनते हैं कभी कभी फिल्म से लिया गया ये गीत।

101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। स्टूडियो की घड़ी में 10:40 और 35 सेकंड्स हो रहे हैं। सामईन, आज गीत सुरीले गाते जामे हम बात कर रहे हैं गुलकार मुकेश की। मौसीकार खयाम ने गुलकार मुकेश के बारे में कहा था कि मुकेश जी ने जो गीत गाए हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो सदाबहार गाने उन्होंने गाए हैं वो गाने सिर्फ वही गा सकते थे। मुकेश बहुत सादगी पसंद थे। मुसन्निफ राजीव श्रीवास्तव लिखते हैं कि मुकेश की गायकी अपने आप में एक स्कूल है, एक तहजीब है, एक सकाफत है और एक विरसा है। उनकी गायकी हर दौर में काबिले कबूल है और हमेशा रहेगी। सामईन, मुकेश जी के बारे में आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन सुनते हैं उनका गाया हुआ एक और खूबसूरत सा नगमा।

मुकेश अमरीकी शहर में थे तो उस वक्त लता जी भी उनके साथ थी। वो मुकेश के आखिरी लम्हात में उनके साथ ही थी। मुकेश जी की मौत 27 अगस्त 1976 को अमरीकी शहर डेट्रॉइट में हुई और उस वक्त वो तकरीबन एक माह के लिए कनाडा और अमेरिका के दौरे पर थे। उन्होंने म्यूजिकल शोज़ में लता जी के साथ कई गीत गाए। कनाडा के दौरे के दौरान उनकी तबीयत कुछ बिगड़ गई थी, जिसके बाद मुकेश जी के बेटे ने लता जी के साथ गीत गाए और मुकेश जी ने अपने बेटे नितिन मुकेश को लता जी के साथ गाता देख उनकी खूब हौसला अफजाई की थी। बताया जाता है कि जब कनाडा में शो कामयाब हुआ तो मुकेश जी अपनी पूरी टीम के साथ अमेरिका पहुंचे, जहां पर 27 अगस्त को ही उन्हें एक शो में हिस्सा लेना था। लेकिन उसी शाम मुकेश जी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद कुछ ही देर के बाद डॉक्टर्स ने मुकेश जी को मुर्दा करार दिया, यानी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही या शायद अस्पताल पहुंचने के बाद वो फौत हो गए थे। उनका जसद खाकी लता जी अपने साथ हिंदुस्तान लेकर आई, जिसके बाद मुंबई में फिल्मी दुनिया की मारूफ शख्सियत की मौजूदगी में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। बरेसगीर के इस ग्लोकार ने, यानी मुकेश जी ने, अपनी आवाज़ से खुशी हो या गम, जिंदगी का सफर हो या मोहब्बत का इकरार हो, हर एहसास की तर्जुमानी की है।

उनका सबसे बड़ा इनाम वो दर्द वो मिठास थी जो उनकी आवाज़ में थी, जो हर सुनने वाले को अपनी महसूस होती। हर सुनने वाले को दर्द अपना दर्द महसूस होता। आज भी जब उनका कोई गीत बजता है तो यूँ लगता है जैसे कि वो खुद बोल उठे हों। मुकेश के बारे में कहा जाता है कि वो दर्द के बादशाह थे और वो हमेशा रहेंगे। मुकेश साहब का नाम आते ही आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा आता है जो सादगी का पेकर था, और उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था जिसने तन्हाई, मोहब्बत और ज़िंदगी के फलसफे को एक नई पहचान दी। जब वो गाते तो ऐसा लगता जैसे सिर्फ वो गाना नहीं गा रहे हैं बल्कि सुनने वाले का दुख बांट रहे हैं। राज कपूर साहब की रूह समझे जाने वाले मुकेश जी ने अपनी आवाज़ से अनगिनत किरदारों को अमर करने का काम किया।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है और आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। गीत सुरीले गाते जा आप सुन रहे थे। अब बज्म के अख्ताम से खबर लीजिए, समाज फरमाइएगा प्याम शब। तहरीर व पेशकश जनाब नदीम अख्तर जैदी की है।

0: तब अगर हम अपने हर लम्हे को कीमती बना सकते हैं, जो शख्स वक्त की कदर करता है वो अपनी जिंदगी को मकसद, किरदार और नेकी से मालामाल कर लेता है।
1: समीन, इस खूबसूरत से प्यार मिश्र के साथ ही उर्दू प्रोग्राम नैरंग अब अख्ताम को पहुंचता है। अपनी रेडियो दोस्त आयशा बतुलफशा को दीजिएगा इजाजत। इन्हीं मीटर्स पर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के शब बखैर, जय हिंद।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियोज की घड़ी में 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार जो दिल्ली से नशर किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक इलाके से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया।

सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एस पी शर्मा। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स नियरली 1000 पॉइंट्स एंड निफ्टी रिक्लेम्स 24,300 लेवल। एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी आई। निफ्टी ने 24,300 के स्तर को फिर से प्राप्त किया। एशियाई शेयरों में आज गिरावट का रुख और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार की बात करें तो मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.2% की गिरावट आई। इससे पहले बाजार आज सुबह थोड़ी तेजी के साथ खुले थे और इंडेक्स की बड़ी कंपनियों में उछाल की वजह से पूरे सत्र के दौरान ऊपर की ओर बढ़ते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. Sensex surged by 965 points to close at 78,151. Nifty gained 262 points to settle at 24,334. However, in the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index dropped 0.4% and the small-cap 100 index fell by 0.2%. Earlier, the markets opened on a moderately positive note and sustained their upward trajectory throughout the session, supported by gains in index heavyweights.
1: सेंसेक्स की बात करें तो आज 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा के शेयरों में 3.9%, कोटक महिंद्रा बैंक में 3.4% और टाटा कंसल्टेंसी में 3% का उछाल देखा गया। वहीं दूसरी तरफ सनफार्मा में 0.9%

0: 9%, केंट में 0.7% और भारतीय एयरटेल में 0.6% की गिरावट आई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 14 out of the 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, private banks as well as top 10 bank index jumped 1.8%. Mid small private quality tilt index and bank X rose by 1.6% and realty added 1.4%. In contrast, telecommunications dropped 1.5%, capital goods dipped 1.3%, then healthcare lost 1.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,500 companies declined, 1,722 companies advanced, and 190 companies remain unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर चढ़कर ₹96.28 पर बंद हुआ। एसपी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया।
0: आज भारतीय शेयर बाजार में हमें उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है, तो आपकी नजर में इस मजबूती के प्रमुख कारण क्या रहे? क्या ये केवल निवेशकों की भावना है जो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, या फिर आर्थिक संकेतक भी इसके पीछे रहे हैं जो इस तेजी को आगे ले जा रहे हैं?
2: देखिए, आज का जो बाजार की जो मजबूती है उसके पीछे हमारे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो हेडविंड्स हैं, ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टसल है, वो अभी भी जारी है, बल्कि और डीपन हो रही है। यूएस और ईरान में जो वॉर है वो और इंटेंसिफाई हुई है। तो आज का जो बाजार, जो हमने कुछ दिनों से देखा कि बाजार एक मजबूती के दौर में आया हुआ है, उसके पीछे हमारा जो घरेलू एक सपोर्ट है, जो घरेलू एक हमारे नतीजे हैं, जो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और दूसरा जो हमारे जो फंडामेंटल, जो अभी रिसेंट हमने देखा कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे से ग्रो किए, जो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपका जो एक्सटर्नल रेजिलियंस कैसा है। और तीसरा, हमारा जो फॉरेक्स है वो बहुत स्टेबल है, भले ही रूपी के ऊपर अभी प्रेशर है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि क्रूड में तेजी देखी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, वहां पे वापस एक जो प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन सामने आई है, तो जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस बहुत ही प्रेशर में आए हैं और रूपी के ऊपर उसका प्रेशर हमें आते हुए दिखाई दिया। लेकिन जो ओवरऑल हम कहेंगे कि जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। उसके पीछे जो पहले एक ऐसी आशंका थी कि ये जो क्वार्टर है, जो अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर है, इसमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि फेवरेबल नहीं है, युद्ध हुआ और अभी भी जारी है, तो इनका इम्पैक्ट आएगा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो वैसा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। हमें एक बहुत ही स्टेडी जो ग्रोथ है वो हमारे जो बिजनेसेस ने इस दौरान भी की है।
1: डॉक्टर शर्मा, वी हैव आल्सो सीन दैट निफ्टी बैंक वेंट अप बाय 1%, एंड यू मेंशनड अबाउट कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आर नाउ आउट एंड वी कैन सी अबाउट 4 बैंक्स हैव डिक्लेयर्ड पॉजिटिव results as well. What has been the reason behind banking performance at the fundamental level for our economy?
2: Yes, Arjun, because our banks are very resilient and strong, and our economy is growing significantly. Because with this support of the growth, banks are always performing better as compared with the previous quarters or the year on year. Because we are moving ahead. We are growing at around 7%. Last year we grew at 7.7%. For the current year also, again, we are expecting that growth will be somewhere between 6.5 to 7%. So this is the economic activity which is happening and supporting the banking sector trajectory. And second, our banks are very, very resilient. They are not facing any headwind or some repercussion of such developments at the West Asia level. Otherwise, many countries are facing such kind of problems like the banking stress, but in India our banking system remains very, very strong at every crisis, whether the coronavirus or the before that lemon crisis or now the geopolitical crisis. So banks are always very strong.
1: So there's no liquidity issue basically as far as
2: banking. I don't see any liquidity issue. Liquidity is adequate in the system. Yes.
1: But IT index saw a rise today by 1% as well. How do you see their results coming out in the first quarter?
2: Yes, Arjun, this is very important. Earlier, there were many apprehensions that

0: AI is now impacting the trajectory of IT companies or undermining the growth of the IT companies because they'll not be able to perform in the era of artificial intelligence. But I always provided my views, my positive view, that there is no impact of the AI on the IT companies. If the IT shares are declining somewhere or sometime, that is the impact of Middle East crisis only or the fluctuation in the exchange rates. So that is proven now because IT companies are providing very good results. And that is in front of us. And going forward, I don't see any impact of the AI on the IT companies because these are two separate segments. There is no correlation that if the AI is moving ahead with a lot of investments and that will impact the trajectory of the IT companies. These both are, I believe, the complementary segments go hand in hand to support the economy.
1: एसपी अगर पिछले सप्ताह की हम तुलना करें वापस मार्केट की हम बात करते हैं तो इस सप्ताह एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है तो जिसमें एफआईएस और डीआईएस की दोनों की भूमिका को सराहा गया है कि हाँ दोनों ने काफी पैसा भी मतलब निवेश किया है और साथ में एक और प्रश्न मेरा यहाँ पर यह कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार हम गिरावट भी देख रहे हैं.
0: देखिए इसमें ऐसा है, पहले तो जो इन्वेस्टमेंट है जो एफआईआई और डीआईए का इंडिया में जो रुख है वो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन बीच में कुछ फ्लक्चुएशन आती है. खास करके एफआईआई काफ़ी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द ग्लोबल डेवलपमेंट्स. जब भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट, नेगेटिव डेवलपमेंट्स होती है, देन दे पुल देयर मनी, एंड व्हेन देयर इज सम पॉजिटिव डेवलपमेंट देन दे पुट अ सिग्निफिकेंट मनी इन द मार्केट. तो कुल मिला के जो है उनका रवैया एक बैलेंस्ड रहता है. एक फ्लक्चुएशन बहुत होती है लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट.
1: बैलेंसिंग
0: दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट. दे आर द ग्रेट इन्वेस्टर्स. दो आवर मार्केट्स आर सपोर्टेड बाय द रिटेलर्स. अभी तो हमारे ऊपर एफआईआई का कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता क्योंकि हमारा रिटेल सेगमेंट ही बहुत तेज गति से सपोर्ट करता है. जो हमारे रिटेल ट्रांजेक्शन्स हैं वो ही बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट लेवल पे है. और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, एक्चुअल में जब एक मार्केट में चर्निंग होती रहती है, कई बार जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि उसको जो लार्ज कैप्स हैं उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर इज सम प्रेशर ऑन दी स्मॉल कैप और मिड कैप, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है.
1: ओके,
0: मैं अपना चर्निंग करके कुछ अपना मनी प्रॉफिट बुक करके उधर शिफ्ट कर लेता हूं. लेकिन ओवरऑल जैसे एफआईआई और डीआईएस का मैंने बताया, इनमें भी एक बैलेंस जो है वो निरंतर बना रहता है. जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैं वो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी में देखेंगे, दीज आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली. स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में ओवरऑल ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म कैप, मीडियम टू लॉन्ग, हाँ शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस, एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स. दे आर समटाइम्स दे इन्वेस्ट इन द ब्लू चिप्स एंड समटाइम्स दे इन्वेस्ट इन द स्मॉल एंड मिड कैप.
2: स्पीकिंग ऑफ ब्लू चिप्स एंड selective stocks, you've seen that index heavyweights, as it is mentioned in the story as well, gains in index heavyweights, a company which has a great deal of business in the oil and gas space and has a weightage of 9 to 12% on the Sensex, went up by 2%, and as a result we saw the Sensex also go up. What is the prospect in the oil and gas sector?
0: Prospects are very strong because we are gaining great competitiveness and strength in this segment, and we have many reforms in our domestic economy to make this sector more and more resilient and competitive, and we have great possibilities to expand the businesses in this segment, and that's why I believe this is the one of the great promising sectors of the Indian economy. And as you said, the strength of the blue chips, because many of the companies are showing the positive results. Now, on an average, I believe the trajectory is somewhere between 10 to 12, 15% in the growth numbers. So this is very good in the era of such kind of developments at the global level, headwinds and geopolitics. We are growing significantly in the double digits.
1: और आगे बढ़ते हैं. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई क्योंकि सेमीकंडक्टर शेयरों में लगातार नुकसान से पूरे क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है. ताइवान का ताइएक्स 6.5%, जापान का निक्केई 4%, चीन का शंघाई कंपोजिट 3%, हांगकांग का हैंगसेंग

0: इंडेक्स 1.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स लगभग आधा प्रतिशत नीचे आ गया। वहीं दक्षिण कोरियाई बाजार आज छुट्टी के कारण बंद रहे। एसपी, अगर एशियाई बाजारों की हम बात करें तो लगातार एक बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है और सेमीकंडक्टर शेयरों का यहाँ पर जिक्र करना जरूर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वहां पर भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से ये गिरावट हो रही है?
1: देखिये, जो एक तो वापस जो जो युद्ध है, जो वॉर है, वो इंटेंसिफाई हुई है मिडिल ईस्ट में, और दूसरा जो मैंने बताया कि इंडिया का मार्केट रेजिलियंस के बेसिस पे, डोमेस्टिक रेजिलियंस के बेसिस पे ग्रो कर रहा है। अदरवाइज जो हेडविंड्स हैं वो वापस रिजुविनेट हो गई हैं। जो पहले हम देख रहे थे एक शांति का माहौल बन रहा है, बातचीत है, यूएस और ईरान में बातचीत होने वाली है या हो रही है या फिर आने वाले टाइम में हो सकती है, वो अब सब काफी संभावनाएं जो है वो धुंधली नजर आ रही हैं। उनमें कुछ अब ऐसे क्लियर कट हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, बल्कि जो युद्ध है वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया शेप ले रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ऐसे वातावरण में भी बहुत अच्छे से रेजिलिएंट शो कर रही है। जैसे आपने बताया कि ये इकोनॉमीज जो है इमर्जिंग मार्केट्स आर फेसिंग द फ्लक्चुएशंस, वो बात वो युद्ध का सीधा प्रभाव है कि मार्केट्स कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रही हैं। जैसे आज के दिन कुछ भी स्टेटमेंट आएगा यूएस की तरफ से तो पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो मार्केट्स एक पॉजिटिव मोड में आ जाएंगे, कुछ उसमें नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव चले जाएंगे। तो उनका एक सस्टेन्ड जो रवैया जो वो नहीं बन पा रहा है।
0: अभी अगर चाइना के मार्केट की हम बात करते हैं तो वहां पर देखा जा रहा है कि लंबे समय से शेयर बाजार में उथल पुथल सी स्थिति देखी गई है, तो निवेशकों की क्या चिंता बढ़ रही है चाइना के मार्केट में पैसा लगाने में, वो एशिया के जो दूसरे मार्केट्स हैं या भारत का रुख कर रहे हैं?
1: देखिए, भारत तो एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है ही, भारत की तरफ जो रुख है वो तो हमेशा बना रहेगा और आने वाले टाइम में ये रुख और मजबूत होगा क्योंकि हमारे जो रिफॉर्म्स हैं जो हमने पिछले काफी वर्षों में की, 10-12 वर्षों में की, उनके अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं। पोस्ट कोविड ईयर्स में उनके बहुत ही विजिबल रिजल्ट आने शुरू हुए जो कि 21-22 से लेके हम 25-26 तक ऑन एन एवरेज 7% से ऊपर ग्रो किए हैं। और ऐसी अवस्था में हमारा एक्सपोर्ट का अगर आप पिछले 3 महीने में देखेंगे, अप्रैल, मई, जून, तो एवरेज जो है 13% बनता है। एक बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे माहौल में जब ग्लोबल इकोनॉमी इज इंपैक्टेड बाय सो मेनी हेडविंड्स, डिमांड इज डिसेलरेटिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ इज आल्सो डिसेलरेटिंग, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली इन द हाई डबल डिजिट, तो एक बहुत बड़ी चीज है। और लेकिन जब चाइना का भी अगर हम आप 2026 से लेकर 30 तक का एवरेज ग्रोथ रेट देखें, दैट इज लेस देन 4%। इंडिया इज 6.5-6.6%। आप अंतर देखिए कितना है। तो चाइना का स्टोरी काफी डिमिनिश हो रहा है और जो उसके टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं, जैसे अभी आपने बात किया कि जो सेमीकंडक्टर के शेयर्स में वो एआई का जो एक कई बार बहुत ही एम्पलीफायर इंपैक्ट आता है कि एआई से जो स्टॉक्स हैं उनको बहुत बढ़त मिलेगी, और एक बार में फिर कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है कि जी शायद उस तरीके से आगे नहीं ग्रो की है, तो प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं।
2: Let's have a look at the foreign exchange reserves now.
0: जी हाँ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में आंशिक रूप से 964 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 675.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा संपत्ति 930 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 546.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है और सोने का भंडार 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 105.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। एसपी, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फॉरेक्स रिजर्व की, ऐसे में ये जो आंकड़े हैं थोड़ा बहुत मतलब हमें ये दर्शाते जरूर है कि भारत की जो स्थिति है और गति है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है।
1: जी, मैंने बताया आपको कि जो फॉरेक्स है वो बहुत मजबूत है और अभी ये हमने न्यूज देखी है कि बहुत अच्छे से बढ़े हैं, तो ये काफी वीक से इनमें बढ़ोतरी है। तो मैं समझता हूं कि अगर आपका फॉरेक्स स्ट्रांग है एंड यू आर ऑल्सो स्ट्रांग इन द एक्सटर्नल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपोर्ट्स, कैड आपका कंट्रोल में है, तो ये तीनों चीजें मिलके, कैड कंट्रोल में हो, फॉरेक्स आपका स्टेबल हो और तीसरा एक्सपोर्ट्स आर रेजिलिएंट, तो बहुत अच्छी बात पूरे देश की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है जो इकोनॉमी की रेजिलियंस को और फॉरेन अट्रैक्टिवनेस को और इंक्रीज करता है।
0: Right.
2: Moving on to more news. The Office of Economic Advisor, OEA, Department for the Promotion of Industry and Internal Trade will release the revised series of the Index of Core Industries, ICI, with a base year of 2022-23 on the 20th of this month. The Ministry of Commerce and Industry

0: But now again, this will be a great challenge for the global inflation trajectory and not only the inflation numbers, but also impact the many segments of the economy, because economic activity is greatly supported by the energy, like the crude oil prices.
1: Agriculture also, because
0: Yes,
1: sulfur,
0: agriculture
1: fertilizers.
0: inputs are also increase and impact the प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फार्मर्स है.
2: तो इसमें एसपी ये भी ही तो है कि वैश्विक मांग और आपूर्ति को लेकर के संतुलन बनाना आजकल पूरे विश्व के लिए बड़ा मुश्किल होगा, खासतौर पे उन देशों के लिए तो भी ज्यादा ये मुश्किल हो रहा है जो तेल का निर्यात करते हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया. जो निर्यात करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वापस कुछ ऐसा पीस प्रोसेस हो, कोई ऐसी अनाउंसमेंट ट्रम्प साहब से आए कि जिससे वो फिर बातचीत करने की बात में ईरान को बोले और दोनों एक टेबल पर आए और कुछ फाइनल हो. बट इस जंक्चर पे जो सिचुएशन है, दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी.
1: Moving on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.3% up at 1,41,170 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.1% down at 2,15,740 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.2% ऊपर आकर 1,46,576 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.4% नीचे आकर 2,15,070 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। एसपी, जिस तरह से सोने का एक ट्रेंड सा चल रहा है, बहुत ही संभलते हुए अपना एक दिशा की ओर आगे ले जाता है तमाम चीजों, और खासतौर पर अगर निवेशकों की दृष्टि से हम देखें तो निवेशक शायद अपना पैसा ये सोच करके इन्वेस्ट कर रहे हो कि बहुत ही संभल करके मैं इसमें चल सकते हैं मार्केट के बजाय।
0: जी बिल्कुल, बिकॉज गोल्ड एक एक स्टेबल कॉमोडिटी है, बट शॉर्टर पीरियड में कई बार बहुत फ्लक्चुएट भी करती है. तो इन्वेस्टर को इसमें बड़ा सोच समझ के चलना होगा कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स तो अच्छे हैं, बट शॉर्ट टर्म में कई बार बहुत ही फ्लक्चुएट होके जो लोग इसमें स्पेकुलेशन करना चाहते हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है. तो इसमें एक स्टेबिलिटी माइंड में लेके चलना होगा कि अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक उस स्टेबिलिटी के साथ सोचना होगा. अदरवाइज क्योंकि ग्लोबल फ्लक्चुएशन इतनी है, इतने ज्यादा हर रोज अनाउंसमेंट्स हैं, आप देख रहे हैं कि जैसे क्रूड में फ्लक्चुएशन आती है, डॉलर में फ्लक्चुएशन आ रही है, तो गोल्ड भी उन्हीं चीजों में, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स.
2: एसपीएस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: And now our closing headlines in English. Benchmark domestic stock market indices gain over 1%. Sensex adds nearly 1,000 points. Nifty reclaims 24,300 level. Asian stock market indices end in the negative territory. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं रोहिणी लेकर गीत मेरे मन में एक बार फिर से स्टूडियो से साथ हूँ दोस्तों। और दोस्तों बड़े प्यारे एहसास आपसे साझा करूंगी और सदाबहार गीतों का साथ भी बना रहेगा। आपने कभी महसूस किया होगा कि कई दर्दों की गहराई कभी कभी केवल आंखों में आए आंसुओं से नहीं मापी जाती, बल्कि कई बार सबसे गहरी नमी पलकों के पीछे रह जाती है और पलकों के पीछे से गहराई को बताने का ये गुनगुनाता अंदाज आप तक मैं पहुंचाऊंगी इस आपके गीत मेरे मन में।

में, और जिसे आप सुनेंगे 100.1 MHz पर। ये गीत जो कि है तलाश फिल्म से, इस गीत को आवाज दी लता जी और रफी जी ने, इस गीत को अल्फाज दिए मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत एस टी बर्मन साहब का। तो आइए सुनते हैं, आगाज करते हैं गीत मेरे मन मीत का, इस गीत के साथ।

खूबसूरत अंदाज में इन बातों को बयां करते हैं। अगला गीत आए मिलन की बेला फिल्म से आप सुनेंगे लता जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुने ये अंदाज।

जी हाँ, इतने प्यारे गीत सुनकर बुरा तो शायद कोई नहीं मना सकता। 100.1 मेगा हर्ट्स पर गीत मेरे मन मीत दोस्तों आप सुन रहे हैं, और ये अगला गीत आपकी नज़र करते हैं। जी हाँ, तेरे घर के सामने फिल्म से ये गीत है। इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने, आवाज़ दी है रफ़ी साहब और लता जी ने, और दोस्तों संगीत से इस गीत को सजाया है एस डी बामन जी ने।

दोस्तों, ईश्वर की बनाई इस दुनिया में ईश्वर का तो शायद यही सोचना है कि कुछ नहीं अच्छा तो दुनिया में बुरा भी कुछ नहीं, कीजिए सब कुछ मगर अपनी ज़रूरत देखकर। जी हाँ बिल्कुल, और ज़रूरतें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं दोस्तों। आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की, यूँ बिखरे बिखरे ना तुम अच्छे लगते हो ना हम। 100.1 MHz पर गीतों का ये प्यारा अंदाज, सुरीला अंदाज आप सुन रहे हैं मेरे यानी रोहिणी के साथ। और ये अगला गीत मेरे जीवन साथी फिल्म से, आइए सुनते हैं।

वो कहते हैं ना कि आओ कि अब ये दिल चैन तो पा जाए, भटका राही कोई मंजिल को पा जाए। 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। लेकिन श्रोताओं, ये जो घड़ी की टिक टिक है ना, ये मुझे बार बार कह रही है कि आज गीत मेरे मन मीत को मुझे यहीं समेटना होगा। तो फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत, आपको छोड़े जाती हूँ एक और बेहद सुरीले तराने के साथ। जी हाँ, अनजाना फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे जिसे मखमली आवाज से सजाया है रफी जी और सुमन कल्याणपुर ने। और इस गीत को आवाज तो इन्होंने दी, लेकिन अल्फाज दिए आनंद बख्शी जी ने, और संगीत का आनंद आप लेंगे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के अंदाज में। तो आइए सुनते हैं, और फिलहाल मुझे रोहिणी को दीजिए इजाजत। 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल आप सुनते रहिए कुछ इसी अंदाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भवह की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जोड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूँ आपका मनपसंद निशिकंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

देखो ना, न जाने क्या हुआ है मुझे तुमसे मिलने के बाद। हर दुआ में शामिल हो तुम, मेरी जिंदगी में आने के बाद। बेकरार सा रहता था दिल मेरा हमेशा, पर अब सुकून मिलता है मुझे तुम्हारी बाहों में आने के बाद।

हर आहट पर लगता है कि तुम आए हो, हर आहट पर लगता है कि तुम आए हो, हवा के हर झोंके में तुम्हारा ही साया लगता है। अब तो लौट आओ की सांसें भी पूछती हैं कि तुमने किसे इस कदर दिल में बसाया है।

तुमसे मिलने से पहले तक सिर्फ जी ही तो रहे थे हम, तुमसे मिलने से पहले तक तो सिर्फ जी ही तो रहे थे हम, तुमसे क्या मिले कि जिंदगी से ही मोहब्बत सी हो गई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ, कार्यक्रम निशिगंधा।

तुम पास हो तो हर लम्हा सुहाना लगता है, तुम पास हो तो हर लम्हा सुहाना लगता है, वरना ये सारा जमाना बेगाना सा लगता है।

तेरा दीवाना आज तुझ पर दिल हार बैठा है, तेरा दीवाना आज तुझ पर दिल हार बैठा है। ये देख कि वो अपनी रूह को भी तेरी चाहत में उतार बैठा है।

तेरी चाहत में खुद को भुला दिया, मैंने अपने हर पल तुझ पर लुटा दिया। मेरा दामन तो है तेरे कदमों की छांव में, अब कोई फर्क नहीं धूप और छांव में।

जमाने भर की परवाह छोड़ दी मैंने, जमाने भर की परवाह छोड़ दी मैंने, जब से तेरे साथ की कसम ले ली। अब तो मेरी किस्मत तेरे ही हाथों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G, डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं को कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। डॉ. मांडविया कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मेरा युवा भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पश्चिम बंगाल के स्वर्ण सुवर्ण रेलवे स्टेशन के पास स्कूल वैन और यात्री ट्रेन के टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्ती कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आपसे 1:10 पर फिर से मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर। मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 23 सेकेंड, और अब समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू, लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।
1: इसे रंग बत...

मिले तो मुकम्मल हो जाती है दुनिया मेरी, तू मिले तो मुकम्मल हो जाती है दुनिया मेरी, तेरे संग ही जीना है मुझे, अब यही आखिरी चाहत है मेरी।

अब तू जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, अब तू जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, मुझे तेरी हर बात पर इकरार है, क्योंकि तू ही मेरी तकदीर है।

तूने इस कदर बसाया है खुद को मेरी आंखों में, तूने इस कदर बसाया है खुद को मेरी आंखों में कि अब तेरे बगैर कहाँ जाएंगे हम, तू ही तो रहता है हर वक्त मेरी बातों में।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल में बेकरारी सी है और आंखों में तुम्हारा ही ख्वाब है। दिल में बेकरारी सी है और आंखों में तुम्हारा ही ख्वाब है। तुम मिले नहीं तो क्या हुआ, तुम मिले नहीं तो क्या हुआ, इस धड़कन में बस तुम्हारा ही तो राज है।

जमाने भर के रास्ते मुझे तेरी तरफ ही लाते हैं, जमाने भर के रास्ते मुझे तेरी तरफ ही लाते हैं, मुझे छोड़कर जाओगे कहाँ, कदम तो बस मेरी तरफ ही आते हैं।

भी झूमकर पैगाम लाती हैं, आज हवाएं भी झूमकर पैगाम लाती हैं कि देखो मेरा महबूब आता है इन वादियों में, तो ये बहारें भी मुस्कुराती हैं।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक

भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवह की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर में कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य के 70 किलोग्राम एमडीएमए ड्रग्स की कथित तस्करी से संबंधित जांच के सिलसिले में चलाया गया। ईडी ने बताया कि यह जांच इंदौर अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। साथ ही आरोपियों की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से संबंधित विवरण भी प्राप्त हुए हैं। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किए गए हैं। चीन के दक्षिणी पश्चिमी शहर चोंगजिंग में कल हुए भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 34 लोग लापता हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार बचाव दलों ने मलबे से 10 लोगों को जीवित निकाला जिनमें 2 की हालत गंभीर है। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बताया कि ये भूस्खलन सुबह चोंगजिंग के पेंगशुई काउंटी में हुआ। चट्टानों और मिट्टी का विशाल मलबा पहाड़ी से नीचे गिरा और 10 से अधिक रिहायशी इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। घटनास्थल पर 800 से अधिक बचाव कर्मी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000

बस तो अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद कार्यक्रम रात सुरमई लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 10 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू और लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीत। रहिए इस घंटे मेरे साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार।

नजरों में कुछ तो बात है, तेरी नजरों में कुछ तो बात है जो हर बार हमें वहीं रोक लेती है।

जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, हर किसी को मोहब्बत रास भी नहीं आती।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

चांद की चांदनी से एक पालकी बनाई है, ये रात भी हमने सिर्फ तुम्हारे लिए सजाई है। तुम पास हो तो धड़कनें भी गुनगुनाती हैं, ऐसा लगता है जैसे खुद खुदा ने ये खुशियां बरसाई हैं।

दिल में उतरने में तो सदियां लग जाती हैं, दिल में उतरने में तो सदियां लग जाती हैं, और तुम पूछते हो कि तुम्हें पता है कि मोहब्बत क्या है।

दोस्तों, अब समय हुआ है समाचारों का। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपके साथ रहेंगी भारती, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के

0: विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्तोनिया की राजधानी टालिन में एस्तोनियाई विदेश मंत्री मार्केस साहकना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, डिजिटल बदलाव, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में भारत एस्तोनिया सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said, "The NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier." Prime Minister

मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं छलिया बापू के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

अभी आपने गीत सुना छैला बाबू से। दूरियां चाहे कितनी भी हो, सच्चा प्यार हमेशा दिलों को करीब रखता है। और जब प्यार दिलों में बस जाए तो उसका चेहरा किसी परी से कम नहीं लगता।

सच्चे प्यार में इंतज़ार भी एक खूबसूरत एहसास बन जाता है और इंतज़ार की हर घड़ी प्रेम की गहराई को और बढ़ा देती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम चल रहा है हम राही। प्यार की मधुर मुस्कान, प्यार की मधुर मुस्कान कब दिल चुरा ले, प्यार की मधुर मुस्कान कब दिल चुरा ले पता ही नहीं चलता। प्रेम की मासूम अदाएं, प्रेम की मासूम अदाएं कब दिल जीत ले पता ही नहीं चलता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्यार के बिना कहे भी दिल की बातें समझ आ जाती हैं। प्यार में बिना कहे भी दिल की बातें समझ आ जाती हैं और पता ही नहीं चलता कि मन कब सुकून और उजालों से भर जाता है।

तुम्हें छोड़कर भले ही राहें अलग हो जाएं, तुम्हें छोड़कर भले ही राहें अलग हो जाएं, यादों की खुशबू हर पल साथ रहती है और मोहब्बत हर धड़कन में जिंदा रहती है।

और समय कह रहा है कि आप आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। छोड़े जा रही हूँ आपको हमराही कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ, और जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा

0: और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में आज और कल 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में संघर्ष और तेज हो गया है। हॉर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों ने आज एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। सर गारफील्ड सोबर्स ने 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier. Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant railway station. He also inaugurated national highway projects, including a 4-lane greenfield Delhi-Amritsar-Katra expressway, and laid the foundation stone for the development of 6-lane greenfield Southern Ludhiana bypass. Earlier, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen power train between Jind and Sonipat at Jind railway station in Haryana yesterday. Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated several development projects to the nation of worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects in Haryana. In Chandigarh, the Prime Minister launched projects around 4,700 crore rupees in key areas including healthcare, education and road infrastructure. Union Home Minister Amit Shah has arrived in

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ प्रोग्राम अरुणिमा में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की लम्हे फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है हरिहरन ने।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लम्हे से, इस गीत के संगीतकार शिव हरि और गीतकार आनंद बख्शी। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म आनंद से लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीतकार गुलजार, संगीतकार सलील चौधरी।

और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, प्रोग्राम है आरुणिमा।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म अमर प्रेम से किशोर कुमार की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आरडी बर्मन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

अभी आपने गीत सुना फिल्म सागर से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार आरटी बर्मन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म सत्य पे सत्ता से आशा भोसले, किशोर कुमार, भूपेंद्र, सपना चक्रवर्ती, बासु और उनके साथियों की आवाज़ में, गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार आरटी बर्मन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म खून भरी मांग से साधना सरगम नितिन मुकेश की आवाज में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जल्दी मुलाकात होगी, यानी 5:10 पर। आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और जो आखिरी गीत है इस कार्यक्रम का, वो है फिल्म हरियाली और रास्ता से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। छोड़े जा रहे हूँ आपको इस प्यारे से गीत के साथ, और जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को भी रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमाकाच में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक

वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 138 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं में 53 किलोमीटर से अधिक लंबी पुणे शिरूर 6 लेन सड़क, करीब 30 किलोमीटर लंबी हटपसर येवत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और 54 किलोमीटर से अधिक लंबी तालेगांव चाकन शिकरापुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय की बचत होगी और यातायात जाम से छुटकारा मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। बैठक में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नोकिया की दीर्घकालिक भूमिका का भी उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने एस मुनवारी बेगम को उपाध्यक्ष और गिलेन ई सूजा टिकलो को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य मंत्रिमंडल ने नागरिकों को बेहतर, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नवाचारी पहलों को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सबका एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस भजन के साथ।

जीवन में शांति हमें सिखाती है कि जब मन में भक्ति और विश्वास हो तो जीवन का हर वनपथ भी सुंदर बन जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जैसे सुबह की ठंडी पुरवैया मन को ताजगी देती है, वैसे ही अच्छी विचार, अच्छे सोच जीवन में नई ऊर्जा भर देते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी।